91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भी संगीत आराधना अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तुम सारा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कहने श्रोताओं, मैं या तुम भी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हो कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। श्रोताओं कर देना अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीत दे कन्ने।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ इस वक्त तो सारे कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन दे न कार्यक्रम दा अगला गीत तो सारे इं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पर।

सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
3: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिर कर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरें तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है, हम मजा कर रहे हैं इधर?
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, सर मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का, अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 रुपीज का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो, 30,000 का?
8: हाँ
9: ले दो।
8: सच्ची?
9: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
9: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की EMI आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: बेबी पागल हो क्या, या मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है, आप कह रहे हो EMI भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो,
9: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?

0: मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।
1: लिखे जो खत

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

0: संभालो मुझको मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया।
1: श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओ, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

0: चलिया।
1: गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने का ये सफर अब यहीं पर होता है संपन्न। ज्योति को दीजिए अब अनुमति, जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और कार्यक्रम में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो। बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
3: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिर कर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है, हम मजा कर रहे हैं इधर?
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना, तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले, तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: ये पर्स है 30,000 रुपीज का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो, 30,000 का?
8: हाँ
9: ले दो।
8: सच्ची?
9: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
9: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की EMI आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: पागल हो क्या? यहाँ मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है। आप कह रहे हो EMI भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो,
9: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। सुबह के 9 बज गए हैं और श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि जैसे ही 9 बजते हैं सुबह के, तो कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला जो है वो आपका शुरू हो जाता है। और श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं हाजिर हुई हूँ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। सबसे पहले कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरे राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक ठाक होंगे और कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके होंगे। जो श्रोता कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं उनका तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम में। और जो श्रोता अभी तक नहीं जुड़े हैं उनसे हम यही कहेंगे कि अपने काम भी कीजिए और जल्दी से रेडियो के साथ जुड़ जाइए। ये गुड मॉर्निंग धर्मशाला का सफ़र जो है रहता है 2 घंटों का श्रोताओं, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। इस कार्यक्रम में रोज़ाना की तरह आपके साथ होती हैं बातचीत और आप तक पहुंचाई जाती हैं जानकारियां श्रोताओं, और साथ ही आपके मनोरंजन के लिए लेकर आते हैं हम प्यारे प्यारे गीत। और साथ ही आपको बता दें 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हमीरपुर के ढिटवाल की आवाज़ पर भी आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। हमीरपुर के भी जितने भी श्रोता हैं उन सभी को भी सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस विचार के साथ, खुशी देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। विचार को एक बार फिर से दोहराएंगे, खुशी देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। तो श्रोताओं, इस विचार में बहुत बड़ी बात कही गई है। अपनी खुशी को देखकर तो हम

खुश होते ही हैं, लेकिन दूसरों की खुशी को देखकर भी हमें खुश हो लेना चाहिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत इस विचार के साथ हमने कर दी है और अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे प्यारे से गीत के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे हमने लिया है मेरे सनम फिल्म से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

जी श्रोताओं, बिल्कुल कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का आगाज़ हमने किया इस प्यारे से गीत के साथ, और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत कार्यक्रम में आज आपको सुनने को मिलेंगे श्रोताओं। वैसे तो हम रोज़ ही आपको प्यारे प्यारे और अच्छे गीत सुनाते ही हैं, लेकिन हम चुन चुन कर इन गीतों को लेकर आते हैं कि कहीं कोई गीत रिपीट ना हो जाए और आपको नए दिन नए गीत सुनने को मिले। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में ऐसे ही गीतों को सुनने के लिए कार्यक्रम के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, और जैसे कि हमने कहा कि जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत है, और जो नहीं जुड़े हैं उन तक अगर हमारी आवाज़ दूर तक पहुंच रही है तो उनसे हम यही कहेंगे रेडियो सेट ऑन कर लीजिए या रेडियो सेट के पास आ जाइए और रेडियो सेट की वॉल्यूम उतनी सी कर लीजिए जितनी कि आप कहीं भी कोई भी काम करने के साथ साथ कार्यक्रम को सुन भी सकते हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा प्रयास रहता है मौसम की जानकारी भी आप तक पहुंचाने का, और बहुत सारे श्रोता हमारे धर्मशाला से बाहर के जुड़े रहते हैं जिन्हें ज़रूर जानने की इच्छा रहती है कि धर्मशाला में आज का वेदर कैसा होगा। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि हल्की फुल्की फुहारें जो हैं वो इस समय पड़ रही हैं, बहुत तेज़ बारिश तो नहीं है लेकिन बारिश है। तो श्रोताओं, धर्मशाला की हम बात कर रहे हैं, आज का न्यूनतम तापमान जो है धर्मशाला का 16 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। हवा में नमी की बात करें तो 97% जो है नमी बनी हुई है, और बारिश आज रहेगी हल्की फुल्की ही सही, लेकिन पूरा दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। साथ ही श्रोताओं, अगर विस्तार में बात करें मौसम के बारे में तो भारत मौसम विज्ञान विभाग शिमला केंद्र के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार 10 अगस्त तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। श्रोताओं, कल यानी कि 6 अगस्त को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिला में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 7 अगस्त को 5 जिलों में ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिला में भारी वर्षा का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें, भारी बारिश और अगले दो दिनों के लिए आईएमडी द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए सिरमौर जिला के पौंटा साहिब उपमंडल में 5 और 6 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। साथ ही श्रोताओं, आपको बता दें कि ऐसे मौसम में हम भी आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप लोग घर में सुरक्षित रहें, और कहीं बाहर अगर बहुत ज़रूरी हो तो मौसम को देखकर ही कोई भी फैसला लें, और अगर ज़रूरी नहीं है तो ऐसे में ना जाएं। तो कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में जानकारी मौसम की देने के बाद अब हम चलेंगे कार्यक्रम में मनोरंजन की ओर, और सावन का ये महीना है, बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है, ऐसे में ये गीत सुनना बनता है। तो लीजिए सुनिए इस गीत को जिसे हम लेकर आए हैं साजन का घर फिल्म से, साधना सरगम और कुमार शानू की आवाज़ों में।

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। ये गीत श्रोताओं के लिए था जो श्रोता अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं कि आप भी जल्दी से कार्यक्रम के साथ जुड़ जाइए। बिल्कुल श्रोताओं, ऐसे ही प्यारे प्यारे गीत और भी कार्यक्रम में आप तक पहुंचाने हैं और हमारे पास समय अभी और भी है, बातें और भी हैं, तो आपसे हम जल्दी से यही कहेंगे कि जितने भी श्रोता कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं वो जुड़े रहें और जो नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से कार्यक्रम के साथ जुड़ जाएं। आप सभी ट्यून इन है 91.2 MHz पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं 9:20 पर हम आपको सुनवाते हैं समाचार। तो कार्यक्रम में अब समय होने जा रहा है समाचारों का। समाचार सुनना भी ज़रूरी है, देश प्रदेश की खबरें हम तक पहुँचती हैं और इन खबरों के बाद कार्यक्रम में हम फिर से जुड़ेंगे इसी कार्यक्रम के साथ। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में एम्बुलेंस सड़क संपर्क के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित सड़क संपर्क पहुंचाना उद्देश्य। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए HRDC ने 297 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल। आगामी विधानसभा सत्र में राज्य सरकार को विभिन्न जनहित मुद्दों और कार्यशैली के लिए घेरने की भाजपा विधायक दल ने बनाई रणनीति। आज शिमला में भाजपा विधायक दल करेगा विरोध प्रदर्शन। और प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना के प्रदेश के युवाओं को घर द्वार पर मिल रहा रोजगार। कुल्लू जिला में 300 लाभान्वित। अब समाचार विस्तार से। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 259 सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती की गई है। राज्य सरकार द्वारा इसी वर्ष सहायक स्टाफ नर्सों की ये दूसरी बड़ी भर्ती है। इससे पहले इसी वर्ष 3 महीने में भी 372 इन नर्सों की तैनाती से सरकारी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसी उद्देश्य से चिकित्सा संस्थानों में आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कुशल मानव संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने जीत योग्य व एम्बुलेंस संपर्क सड़कों के डिजाइन, निर्माण, प्रमाणन और रखरखाव के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये देश में अपनी तरह की पहली व्यापक व्यवस्था है जिसके माध्यम से प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित सड़क संपर्क सुनिश्चित करना है। नई व्यवस्था में सड़क की चौड़ाई, सड़क की सतह, जल निकासी व्यवस्था, रिटेनिंग वॉल, ढलानों की सुरक्षा, सड़क सुरक्षा उपायों तथा नियमित रखरखाव से संबंधित स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं ताकि ये सड़कें सुरक्षित, टिकाऊ और लंबे समय तक उपयोग योग्य हो सके। प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, विभिन्न जनहित के मुद्दों पर राज्य सरकार की कार्यशैली सहित आगामी विधानसभा सत्र की रणनीति बनाने को लेकर कल भाजपा विधायक दल की एक अहम बैठक शिमला में आयोजित हुई। भाजपा विधायक दल ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगातार झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है और प्रतिशोध की भावना से विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। बैठक की जानकारी देते हुए भाजपा विधायक दल के सचिव रणधीर शर्मा ने बताया कि विधायक दल ने आगामी मानसून सत्र से जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती के साथ सदन में उठाने की रणनीति बनाई है, जिसमें आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, खराब कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, सरकार द्वारा बंद की गई विकास योजनाएं और मानसून से प्रदेश में चरमराई मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा शामिल किया गया है। इस बीच राज्य सरकार द्वारा प्रतिशोध की राजनीति, भाजपा प्रतिनिधियों पर झूठे मुकदमों और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज शिमला में विरोध प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन की जानकारी देते हुए भाजपा के मीडिया प्रभारी करण नंदा ने बताया कि आज होने वाले प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित भाजपा विधायक दल शामिल होगा।
1: आज भारतीय जनता पार्टी एक शिमला में धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रही है। यह प्रदर्शन CTO से लोअर बाजार होते हुए शेरे पंजाब तक जाएगा। इस प्रदर्शन में कांग्रेस की वर्तमान सरकार के खिलाफ एक रोष प्रकट किया जाएगा। जिस प्रकार से प्रतिशोध की राजनीति हिमाचल प्रदेश में चल रही है और लगातार भाजपा के विधायकों के ऊपर FIR बनाई जारी है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मंडल स्तर तक धरना प्रदर्शनों का आयोजन भी करेगी।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंच सके। नई दिल्ली में अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक में चौहान ने कहा कि इथेनॉल से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना प्रदेश के युवाओं के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत कुल्लू जिला में 300 मछुआरों को शामिल किया गया है, जिससे उन्हें घर द्वार पर ही रोजगार उपलब्ध हो पाया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
2: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना युवा किसान बागवानों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत युवा किसानों व बागवानों को मछली पालन शुरू करने के लिए ऋण दिया जाता है, जिस पर 40-60% तक का अनुदान भी दिया जाता है। योजना का उद्देश्य नए तालाबों का निर्माण व बागवानी के साथ साथ मछली पालन को बढ़ावा देना है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मछली पालकों को सस्ते दर पर 5 लाख रुपए तक का ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा मछुआरों व मत्स्य पालकों को 5 लाख तक के दुर्घटना बीमा के अंतर्गत भी लाया गया है। कुल्लू जिला में इस समय मत्स्य विभाग के पास 300 मछुआरे हैं, जिन्हें इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: राज्य सरकार ने इको फ्रेंडली और आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए HRTC के बेड़े में 297 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया है, जिसमें से 25 इलेक्ट्रिक बसें सिरमौर जिला में चलाई जाएगी। ये बात संसदीय कार्य व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नाहन में ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद कही। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों से यातायात प्रणाली पर्यावरण अनुकूल बनेगी, बल्कि शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवा भी सशक्त होगी। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शुमार लाहौल स्पीति जिला की चंद्रताल झील को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया है। झील क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग सहित सेव चंद्रताल सोसाइटी और हिलिंग हिमालया स्वयंसेवी संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से ये अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
3: विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शुमार चंद्रताल को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग, सेव चंद्रताल सोसाइटी और हीलिंग हिमालय के संयुक्त प्रयास से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान चंद्रताल मार्ग से 548.7 किलोग्राम ठोस कचरा एकत्र कर सुरक्षित निस्तारण के लिए भेजा गया। इससे पहले कैंप साइट संचालकों के साथ आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में ठोस और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के साथ प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के नियमों की जानकारी दी गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से लाहौल स्पीति में स्वच्छता बनाए रखने में सक्रिय सहयोग की अपील की है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम लगातार जारी है। आज भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा और मंडी जिला में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इधर लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में आज और कल 2 दिनों के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी कर दी गई है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। 10 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर, 2 माह में लागू होगी नई नीति शीर्षक से अमर उजाला लिखता है, नई स्वास्थ्य बीमा नीति में 10 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे पात्र परिवार। प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है, बहू के निजी मकान में सास को भी रहने का अधिकार। शिमला रामपुर सड़क होगी अब 4 लेन, केंद्र सरकार ने मंजूर किए 73 करोड़ रुपए, शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है, बागवानों को मिलेगा लाभ, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तैयार करेगा DPR। दिव्य हिमाचल व हिमाचल दस्तक की एक जैसी सुर्खी है, हिमाचल में चिट्टे की अब तक की सबसे बड़ी खेप शिमला में बरामद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में एम्बुलेंस संपर्क सड़क के डिजाइन, निर्माण और रख रखाव के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी, दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित सड़क संपर्क पहुंचाने उद्देश्य। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए HRTC में 297 इलेक्ट्रिक बसें शामिल। आगामी विधानसभा सत्र में राज्य सरकार को विभिन्न जनहित मुद्दों और कार्यशैली के लिए भेजने की भाजपा विधायक दल ने बनाई रणनीति। आज शिमला में भाजपा विधायक दल करेगा विरोध प्रदर्शन। और प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना के प्रदेश के युवाओं को घर द्वार पर मिल रहा रोजगार। कुल्लू जिला में 300 मछुआरे मेला कर रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचारों के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, समाचारों के बाद अब एक बार फिर से कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और कार्यक्रम की शुरुआत फिर से करेंगे एक प्यारे से गीत के साथ। चलिए आपको सुनवाते हैं और साथ ही हम भी सुनते हैं इतिहास फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत, और इस गीत में कहीं ना कहीं इतिहास लिखने की बात कही गई थी। और इतिहास से हमें याद आया कि हम भी इतिहास की ओर रुख करते हैं, यानी कि आज 5 अगस्त है और इतिहास के पन्नों में भी ये दिन दर्ज हुआ है। क्यों दर्ज हुआ है, क्या ऐसा खास रहा है, उस पर नज़र डालते हैं श्रोताओं। वर्ष 2019 की बात करें तो भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 और 35A के विशेष प्रावधानों को समाप्त किया था आज ही के दिन। साथ ही श्रोताओं, 2020 की ओर आगे बढ़ें तो आज ही के दिन 2020 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन किया गया। और श्रोताओं, विश्व इतिहास की कुछ घटनाओं पर नज़र डालें तो आज ही के दिन वर्ष 1914 में अमेरिका के क्लीवलैंड शहर में दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया। और साथ ही वर्ष 1960 में आज ही के दिन अफ्रीकी देश बुर्किना फासो को फ्रांस से पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। साथ ही श्रोताओं, आज के दिन की हम बात कर रहे हैं तो वर्ष 1930 में आज ही के दिन चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग का जन्म भी हुआ था। वर्ष 1975 में आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री काजोल का जन्म भी आज ही के दिन हुआ। तो श्रोताओं, इतिहास की इन खबरों के बाद हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे श्रोताओं, और आपका मनोरंजन करवाएंगे एक प्यारे से गीत के साथ। इस गीत के बाद हम चले

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। इस प्यारे से गीत के बाद श्रोताओं आप कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ जानकारियों को सामने लेकर आएंगे। कुछ खबरें हैं जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है श्रोताओं। कुछ घटनाएं जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें भी कोई ना कोई सीख देकर जाती हैं। तो श्रोताओं, आज जो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं वो है कांगड़ा के वीरता गांव की। वहां पर खेलते समय स्प्रे पंप की पाइप जो है वो बच्चे ने मुँह में डाल ली और उससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। श्रोताओं, जानकारी के अनुसार जो है वो 2.5 वर्ष का बेटा यानी कि जो लड़का था वो घर के आंगन में एक स्टोर बना हुआ था जहाँ पर हम अपना सामान जो है वो रखते हैं, तो बच्चा कब वहाँ पहुँच गया और उसने स्प्रे करने वाली एक पाइप को मुंह में डाल लिया जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी और बहुत सारी उल्टियाँ उसे हुई। तब माँ को लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है और उन्हें शक हुआ कि कहीं ना कहीं इसने मुंह में कुछ ऐसा डाल लिया है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया और अब तबीयत में थोड़ा सा सुधार है। लेकिन श्रोताओं, ये जो खबर है ये कहीं ना कहीं हमें सचेत करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि छोटी सी लापरवाही कई बार हम पर या हमारे घर वालों पर भारी पड़ सकती है। श्रोताओं, ये तो चलो खेतीबाड़ी के काम करने वाले लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं खेतीबाड़ी में, दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, कई सारे कीटनाशक का स्प्रे भी हम करते हैं और स्टोर में ये चीज़ें हम लोग रख देते हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें कोई भी चीज़ मिल जाए वो मुँह में डाल लेते हैं। तो श्रोताओं, ऐसे में हम यही कहेंगे कि आप खास ख्याल रखिए छोटे बच्चों का। ये तो थी स्प्रे पंप की जो पाइप है उसे मुंह में डालने वाली बात, लेकिन कई बार हम घरों में हमारे जो सिक्के पड़े होते हैं वो भी ऐसे ही रख देते हैं, पानी की कोई बॉटल खुली रख देते हैं या किसी भी बॉटल का जो ढक्कन है वो हल्का सा लूज़ हो और बच्चा जो है वो उसे मुंह में डाल लेता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएँ जो हैं हो जाती हैं, तो ऐसे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और ऐसी घटनाएँ ना हो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में आप तक हमने पहुंचाई ये खबर, ये जानकारी और इसके बाद अब कार्यक्रम में हम फिर से लौटेंगे प्यारे से गीत की ओर। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ जिसे हम लेकर आए हैं ब्लफ मास्टर फिल्म से। 1963 की ये फिल्म है, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में इस गीत को आप सभी सुनने वाले हैं आपके सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोता कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में आपने सुना ये प्यारा सा गीत हुस्न चला कुछ ऐसी चाल। बिल्कुल श्रोताओं, हुस्न जो है वो अपनी चाल चल जाता है और कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ बोलने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, हमारी आँखें ही हैं जो बहुत कुछ कह जाती हैं। तो श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं आज की बात की और आज एक खास बात हम करने वाले हैं श्रोताओं, एक छोटी सी अच्छी आदत के बारे में। हम सभी चाहते हैं श्रोताओं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर बने, हम सफल हों, स्वस्थ रहें और हमारे रिश्तों में हमेशा प्यार बना रहे। लेकिन क्या श्रोताओं आपने कभी सोचा है कि इन सब की शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं बल्कि एक छोटी सी अच्छी आदत से होती है। और कहा भी गया है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। ठीक उसी तरह छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर हमारे व्यक्तित्व और जीवन को नई दिशा देती है। श्रोताओं थोड़ा सा सोचिए, अगर हम हर दिन समय पर उठने की आदत डाल लें, घर से निकलते समय बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें, किसी से बात करते समय मुस्कुरा कर बात करें, अपने आसपास सफाई रखें, ज़रूरत ना होने पर बिजली और पानी बचाएं, या दिन में केवल 10 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ लें या किसी के काम हम आ जाएं, तो क्या ये अच्छी आदतें धीरे धीरे हमें एक बेहतर इंसान नहीं बनाएंगी? श्रोताओं अक्सर हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि अच्छी आदतों के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। और महात्मा गांधी ने कहा भी था, आपके विचार आपके शब्द बनते हैं, आपके शब्द आपके कर्म आपकी आदतें और आपकी आदतें आपका चरित्र बनाती हैं। तो श्रोताओं कार्यक्रम में और भी बातें आपके साथ करेंगे, फिर से हम आपको लिए चलेंगे एक और प्यारे से गीत की और। दिल अपना और प्रीत पराई इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सभी के रेडियो सेट पर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद कार्यक्रम में फिर से लौटेंगे, कुछ जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे। तो यूँ ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

जी श्रोताओं, इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप अभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और श्रोताओं, एक बार फिर से बता दें कि कार्यक्रम का समय रहता है प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का। इस कार्यक्रम में हम आपके साथ करते हैं बातचीत और आप तक पहुँचाते हैं जानकारियाँ। श्रोताओं, साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम को आप हमारे फेसबुक पेज रेडियो गुंजन का जो फेसबुक पेज है उस पर लाइव भी देख सकते हैं और छोटी छोटी क्लिप्स हम डालते रहते हैं श्रोताओं, और उस पर बहुत सारे श्रोता हमारे लाइक्स भी देते हैं। हम उनसे यही कहेंगे कि अच्छा बुरा जो आपको ठीक लगे ज़रूर उस पर कमेंट किया कीजिए, कहीं हमारी कमियां हो खामियां हो तो उन्हें भी हमें बताया कीजिए, हमें अच्छा लगता है। तो श्रोताओं, फेसबुक लाइव पेज पर इंदु इंदु जी ने हमें गुड मॉर्निंग की है, उन्हें भी गुड मॉर्निंग, वो हमारी नियमित श्रोता हैं। साथ ही आर के गुप्ता, उन्होंने भी गुड मॉर्निंग की है, उन्हें भी गुड मॉर्निंग। जिन्होंने कमेंट किया उन्हें भी गुड मॉर्निंग, जिन्होंने नहीं किया उन्हें भी एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। आप सभी का प्यार, आप सभी के जो सुझाव हैं उनके लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं श्रोताओं, तो आप ज़रूर

ना कुछ हमें ज़रूर बोलिए, कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए। अगर अच्छा लगता है तो भी लिखिए, अगर कहीं आपको कमी लगती है, बुरा लगता है कुछ, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को हमें ज़रूर मिलता है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और जानकारियों की ओर बढ़ेंगे। तो आप तक पहुंचाते हैं एक जानकारी। विद्युत उपमंडल धर्मशाला नंबर 2 के सहायक अभियंता रमन भरमोरिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि विद्युत लाइनों के उचित रखरखाव हेतु 100 KBA मनेर 1 और 100 KBA अपर बगली के तहत आने वाले क्षेत्रों मनेड़, खतेहड़, अपर बगली और इसके साथ लगते क्षेत्रों में 6 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने पर ये काम अगले दिन भी किया जाएगा। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है। एक बार फिर से बता दें, 6 अगस्त को मनेड़, खतेहड़, अपर बगली और अन्य साथ लगते जो क्षेत्र हैं उसमें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। ऐसी ही जानकारी श्रोताओं और भी कार्यक्रम में है जो आप तक पहुंचानी है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको पहले सुनवा देते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत। लीजिए सुनिए कैलाश खेर की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, हम उम्मीद करेंगे कि आपको कार्यक्रम में सुनाए जाने वाले गीत पसंद आते होंगे। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और इस गीत के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे श्रोताओं, अगस्त का महीना जो है वो शुरू हो गया है, चल पड़ा है, और अगस्त के महीने में बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। और श्रोताओं, कुछ दिन पहले ही फ्रेंडशिप डे आप लोगों ने मनाया, और पूरे इस अगस्त के महीने को एक दोस्ती का महीना भी कहा जाता है। श्रोताओं, वैसे तो दोस्ती किसी एक दिन या एक महीने की मोहताज नहीं होती, लेकिन अगस्त में मनाया जाने वाला फ्रेंडशिप डे हमें अपने उन दोस्तों को याद करने का एक खूबसूरत मौका देता है जिन्होंने हर सुख दुख में हमारा साथ निभाया। कहते हैं, दोस्त वह नहीं जो सिर्फ खुशियों के साथ हो, बल्कि दोस्त वह है जो मुश्किल वक्त में बिना बुलाए आपके पास खड़ा हो जाए। ज़िंदगी में कुछ रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं श्रोताओं, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं। यही रिश्ता कभी हंसना सिखाता है, कभी संभलना, तो कभी हार न मानने की हिम्मत देता है। श्रोताओं, स्कूल की बेंच पर साथ बैठने वाला दोस्त, कॉलेज की कैंटीन में घंटों बातें करने वाले दोस्त, नौकरी के पहले दिन हौसला बढ़ाने वाले दोस्त, और आज सोशल मीडिया के ज़माने में दूर रहकर भी दिल के बहुत करीब रहने वाले दोस्त, हर दोस्त हमारी ज़िंदगी की कहानी का एक ख़ास हिस्सा होते हैं। लेकिन श्रोताओं, आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम अक्सर अपने दोस्तों से दूर होते चले जाते हैं। काम की व्यस्तता और जिम्मेदारियों की समय की कमी के कारण कई बार हम उन लोगों को एक फ़ोन तक नहीं कर पाते जो कभी हमारी हर बात जानते थे। तो श्रोताओं, कभी कभी हमें अपने फ़ोन में जो हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है उसे खंगाल लेना चाहिए। बहुत से ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम कई बार टच नहीं कर पाते हैं समय ना मिलने के कारण। तो जब हम ऐसा करते हैं श्रोताओं, तो बहुत सारे ऐसे नंबर हमें दिखते हैं जिन्हें हमने सेव तो किया होता है, लेकिन उन्हें डायल करने का समय हमें नहीं मिला होता है। और श्रोताओं, आपको बता दें कि ऐसी ही आदत मेरी भी है। कई बार ऐसे ही कॉन्टेक्ट लिस्ट को हम स्क्रॉल करते हैं और कहीं ना कहीं जाकर हमारी फिंगर एक नंबर पर अटक जाती है और मन करता है कि उससे बात कर ली जाए। तो श्रोताओं, ऐसे ही बहुत सारे दोस्त आपकी ज़िंदगी में भी होंगे जिनसे बात करने का समय आपको नहीं मिला होगा। तो आज इस कार्यक्रम के बाद अगर आपको भी आपके किसी दोस्त की याद आती है तो ज़रूर अपना फ़ोन उठाइए और उसे फ़ोन मिलाइए। आपको भी अच्छा लगेगा और आपके दूसरे दोस्त को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो कार्यक्रम में दोस्ती की बात की है, तो चलिए इस प्यारे से गीत को सुनते हैं और कहीं ना कहीं दोस्ती को याद करते हैं। खुदगर्ज फिल्म का गीत है श्रोताओं ये, और नितिन मुकेश की आवाज़ में ये गीत गाया गया है। तो लीजिए, सुनिए इस प्यारे से गीत को।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 ओमेगा हर्ट्ज पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं, आजकल की दोस्ती अक्सर सोशल मीडिया चैट और लाइक्स तक ही सीमित होती जा रही है। बहुत लोग साथ तो रहते हैं, लेकिन मुश्किल समय आने पर बहुत कम लोग साथ निभाते हैं। श्रोताओं, आपने देखा होगा कि हमारे दोस्तों की लिस्ट बहुत लंबी होती है, लेकिन सच्ची दोस्ती का पता तब चलता है जब हम पर कोई विपदा आन पड़ती है या कोई बुरा वक्त आ जाता है, तब वो लिस्ट इतनी छोटी हो जाती है, कई बार तो लिस्ट ही गायब हो जाती है। सच में श्रोताओं, ये सच्ची बात है और आजकल की ही बात है। तो सच्ची दोस्ती वही है जिसमें भरोसा, सम्मान, ईमानदारी और एक दूसरे का साथ हो। दोस्त वह नहीं जो सिर्फ खुशी में साथ हो, बल्कि वह है जो दुख और कठिनाइयों में भी आपका हाथ ना छोड़े। साथी श्रोताओं, मेरा ये मानना है कि अच्छे वक्त में आप किसी को याद करें ना करें, लेकिन जब भी किसी पर बुरा वक्त आता है, बुरा समय आता है या कोई दुख की घड़ी आती है, तब आपको ज़रूर किसी के साथ खड़े होना चाहिए, चाहे दोस्ती हो ना हो। लेकिन वही बात है कि आजकल एक तो हमारे पास समय नहीं होता है, और ना ही दूसरों के, हम ये भी कहते हैं कई बार कि दूसरों के पचड़ों में क्यों पड़ना है, लेकिन अगर यही सोचेंगे तो हमारे पचड़ों में कौन पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, अच्छे समय में, बुरे समय में हमारे दोस्त, हमारे नज़दीकी अगर हमारे साथ नहीं होंगे तो हमें कैसा लगेगा। तो श्रोताओं, जब भी हम किसी और के बारे में सोचते हैं तो पहले ये सोचना चाहिए कि ये वक्त अगर हम पर आए तो हम उस समय क्या सोचते हैं। तो आप भी सोचिए और इस दोस्ती को, जिस दोस्ती को आप भूल चुके हैं, उसे फिर से याद कीजिए और दोस्तों का साथ ज़रूर दीजिए। और हम आपका साथ देते हैं कार्यक्रम के माध्यम से, और चलिए आपको ऐसा ही एक और प्यारा सा गीत सुनाते हैं कार्यक्रम में।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं मेरे साथ यानी कि आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, कहीं ना कहीं यारी हमारी भी है क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और ये दोस्ती इसी तरह से बनी रहे ऐसी हम कामना करते हैं। श्रोताओं, कहते हैं कि पैसा ज़िंदगी की ज़रूरत है लेकिन ज़िंदगी नहीं। ये हमें सुविधाएं तो दे सकता है लेकिन सुकून, अपनापन और सच्ची दोस्ती नहीं खरीद सकता। कई बार रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब जेब खाली हो और फिर भी कोई आपका साथ ना छोड़े, क्योंकि सच्चा दोस्त आपके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि आपके दिल से रिश्ता निभाता है। श्रोताओं, ये भी सच है कि आज की दुनिया में पैसे की अपनी अहमियत है। मेहनत से कमाया गया धन सम्मान देता है, आत्मनिर्भर बनाता है और सपनों को पूरा करने का हौसला भी देता है। लेकिन जब पैसा इंसान से बड़ा हो जाए तो रिश्तों की मिठास कहीं खोने लगती है। आप भी ये चीज़ मानते होंगे श्रोताओं, तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो पैसे की ताकत और उसकी हकीकत दोनों की ओर इशारा करता है, यानी कि पैसा बोलता है। लीजिए श्रोताओं, सुनिए इस प्यारे से गीत को आपके अपने रेडियो सेट पर, काला बाजार फिल्म से नितिन और मुकेश की आवाज़ों में।

बिल्कुल श्रोताओ, आजकल के समय में इंसान कम बोलते हैं, पैसा ज़्यादा बोलता है और उसकी खनक हम लोग सुनते भी हैं। तो ये गीत जो बना है बिल्कुल सही बना है और बहुत कुछ कहकर गया है ये गीत श्रोताओं। और ऐसे ही गीत कार्यक्रम में और भी आपके लिए कार्यक्रम में अभी बाकी हैं। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आप तक पहुँचाते हैं जानकारी। जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज वैरवा ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा नगरोटा में प्रस्तावित वाहन ओवरपास यानी कि BOP निर्माण कार्य को ध्यान में रखते हुए जन सुरक्षा एवं निर्माण कार्य को सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया है श्रोताओं कि 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक नगरोटा बाईपास क्षेत्र में स्थित मौजूदा MDR सड़क सभी प्रकार के वाहनों के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगी। इस अवधि में वाहनों की आवाजाही को कुआड़ी गांव, चाड़ी गांव, भट्टू चौक, रनु मार्ग से डाइवर्ट किया जाएगा। तो ये जानकारी आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने। श्रोताओं, ये जानकारी के बाद थोड़ी सी बात हम करेंगे कि जब भी कोई पूछता है और बताइए क्या हालचाल है आपकी, तो अक्सर जवाब मिलता है बस सब ठीक ठाक है। लेकिन इस ठीक ठाक के पीछे कई बार ढेर सारी कहानियाँ छिपी होती हैं, कई जिम्मेदारियाँ, कभी सपने, कभी थोड़ी सी थकान और कभी ढेर सारी उम्मीदें। फिर भी हम मुस्कुरा कर कहते हैं कि सब ठीक ठाक है और ये कहकर आगे बढ़ चले जाते हैं। तो श्रोताओं, आज अगर आपको भी किसी अपने की याद आ रही हो तो कार्यक्रम के बाद उन्हें एक फ़ोन ज़रूर कीजिए। हो सकता है आपका एक छोटा सा कैसे हो किसी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ले आए। तो श्रोताओं, इन्हीं प्यारे एहसासों के साथ सुनिए एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। श्रोताओं, ये गीत आप तक पहुँचाने जा रहे हैं हम, हाल चाल ठीक ठाक है। तो लीजिए सुनिए इस प्यारे से गीत को, मेरे अपने। इस फिल्म का गीत मुकेश और किशोर कुमार की आवाज़ों में।

जी श्रोताओं, आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। बिल्कुल, आपकी दुआ और आपका आशीर्वाद और आपका प्यार इसी तरह से हमें मिलता रहेगा तो सब ठीक ठाक ही होगा। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत, और बहुत सारे गीत ऐसे होते हैं श्रोताओं जो बहुत कुछ कह कर जाते हैं, बस समझने की एक ज़रूरत होती है। श्रोताओं, कार्यक्रम में और भी गीत आप तक पहुंचाएंगे, ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे गीत श्रोताओं कार्यक्रम में हैं जो बहुत कुछ कहते हैं। एक और गीत आपको आप सुनवाएंगे जो कि ऐसा गीत है जो बदलती दुनिया, रिश्तों और इंसानी सोच पर गहरी बात करता है। और श्रोताओं, ज़रूर उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल ये गीत पसंद भी आते होंगे और इन गीतों को सुनकर सिर्फ आप सुनते ही नहीं होंगे, साथ में गुनगुनाते भी ज़रूर होंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसा ही गीत आप तक पहुंचाते हैं, इस दुनिया का क्या होगा। लोग श्रोताओं पहले जैसे नहीं रहे, रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट कम होती जा रही है, स्वार्थ बढ़ रहा है और इंसान भाग दौड़ में इतना व्यस्त हो गया है कि अपनेपन और इंसानियत के लिए समय कम पड़ने लगा है। श्रोताओं, ये जो गीत आप सुनेंगे उस गीत की अगर हम बात करें तो हमें बहुत कुछ सोचने पर वो मजबूर करता है। अगर प्रेम, विश्वास और इंसानियत कम होती गई तो दुनिया का क्या होगा। केवल धन और सफलता ही जीवन नहीं है, रिश्तों की अहमियत भी उतनी ही ज़रूरी है। हमें अपनी संस्कृति, मानवीय मूल्यों और आपसी सम्मान को बनाए रखना चाहिए। श्रोताओं, बदलते दौर के साथ दुनिया भी बदल रही है। तकनीक ने दुनिया दूरियों को कम तो कर दिया है, लेकिन कई बार दिलों के बीच की दूरियां बढ़ गई हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम रिश्तों की गर्माहट, अपनापन और इंसानियत को हमेशा ज़िंदा रखें। इन्हीं गहरे एहसासों को अपने शब्दों और आवाज़ में पिरोया है गुरदास मान जी ने। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: की बढ़ूँ दुनिया दा। बिल्कुल श्रोताओं, ये सोचने वाली बात है और आजकल के समय में बहुत बड़ी बात है कि की बढ़ूँ दुनिया दा। इस दुनिया का क्या बनेगा जिस हिसाब से ये दुनिया चल रही है। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी खबरें हम जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया सच में बदल गई है, दुनिया में इंसानियत ख़त्म हो गई है और अपने रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। श्रोताओं, बहुत प्यारा गीत जो बहुत कुछ कह कर गया। रावी तो चना पूछदा कि हाल है सतलुज दा। श्रोताओं, ये जड़ी लाइनें हैं इसमें पंजाब की नदियों रावी, चनाब और सतलुज को मानो इंसानों की तरह बात करते हुए दिखाया गया है। रावी नदी चनाब नदी से पूछ रही है कि सतलुज का क्या हाल है। इसका सीधा अर्थ नदियों की बातचीत नहीं है, बल्कि कवि इसमें ये कहना चाहता है कि पहले प्रकृति, इंसान और समाज के बीच गहरा जुड़ाव था जो कि अब बदल गया है। साथ ही ये लाइन हमें ये भी बताती है कि आज हालात बदल गए हैं। नदियाँ, प्रदूषण और बंटवारे पर्यावरणीय संकट और बदलती जीवन शैली की गवाह हैं। जैसे अपने लोग एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, वैसे ही यहाँ नदियों के माध्यम से अपनेपन, चिंता और बदलते समय का चित्रण किया गया है। साथी श्रोताओं, इस गीत में अगर आपने सुना होगा तो एक लाइन और भी आई थी, शर्म नहीं आती गाला दिन देनू। बिल्कुल, कि आपको शर्म नहीं आती ऐसी गालियाँ देते हुए। तो श्रोताओं, कहीं ना कहीं आपको फिर से याद आ गया होगा जंतर मंतर, जहाँ गालियों की जो बौछारें हुई हैं कहीं ना कहीं हमें शर्मसार करके गई हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पहली बार अपने बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी गालियां देते हुए सुना और उनका सर सच में शर्म से झुक गया। अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बनाए रखना चाहिए। श्रोताओं, हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं, जितनी मर्जी बड़ी शिक्षा हासिल कर लें, लेकिन जब तक हमारी बोली सही नहीं होगी, हमारा संस्कृति हमारी सही नहीं होगी, तो हम किसी भी लायक नहीं हैं। इस गीत के साथ आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही बहुत सारे गीत बने हुए हैं जो बहुत कुछ सिखाते हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत हमसे क्या कह रहा है। अनुरोध फिल्म का ये गीत मन्ना डे की आवाज़ में आप सभी के रेडियो सेट पर।
1: और कुछ यादें, सब्सक्राइब नाउ।

बिल्कुल श्रोताओं, अगर हम बेसहारा हैं तो हमें किसी का सहारा ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसे दर्द होता है वही समझ सकता है किसी और का भी दर्द। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम में अब समय जो है हमारे पास कम है, यानी कि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम का समय अब समाप्ति की ओर चल रहा है। तो चलते चलते सुनवाएंगे आपको आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत कैलाश खेर की आवाज़ में।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
2: इसीलिए

मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है।

0: उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है? हम मजा कर रहे हैं इधर।
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, सर मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 रुपीस का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो,
10: 30,000 का?
8: हाँ
10: ले दो।
8: सच्ची?
10: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
10: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की ईएमआई आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: पागल हो क्या? यहाँ मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है। आप कह रहे हो ईएमआई भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो,
10: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?
8: Yeah.

91.2 मेगाहर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो। बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
2: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिर कर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरें तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है? हम मजा कर रहे हैं इधर।
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ, मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, सर मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना, तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले, तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 रुपीज का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो,
10: 30,000 का?
8: हाँ
10: ले दो।
8: सच्ची?
10: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
10: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की EMI आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: पागल हो गया क्या? मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है, आप कह रहे हो EMI भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो।
10: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?

0: नमस्कार दोस्तों, 91.5 ऑफ द ओमेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ दोस्तों एक नई बातचीत के साथ। दोस्तों कार्यक्रम आप सभी सुनते हैं हर हफ्ते मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर, जिसमें कि हम जानते हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ खास बातें, कुछ खास जानकारियां, जिससे कि हम बीमारियों से बचे रहें और हो सके तो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अगर चेंज करने की जरूरत है तो वो भी हम जरूर करें, क्योंकि उसका सीधा सीधा प्रभाव कहीं ना कहीं हमारी मानसिक हेल्थ पे पड़ता है। तो आप सभी इस प्यारी से कार्यक्रम में और इस बातचीत में जुड़ते हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: सभी के लिए मतलब कि खास जानकारियों के साथ जुड़ते हैं और बहुत ही खास मोमेंट रहता है ये हम सभी के लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, कि मैम अपना इतना कीमती समय जो है ना वो हमारे लिए निकाल कर यहाँ तक आते हैं, तो बहुत खास बात है। लेकिन हमें भी इस अहमियत को समझना है और इस समय की वैल्यू को समझना है। तो स्वागत है मैम आपका एक बार फिर से इस प्यारे से कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सो मच रुचिका
0: जी। तो कैसे हैं मैम आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे?
0: बहुत अच्छे हैं। रूटीन कैसी चल रही है?
1: बहुत क्योटिक बट गुड
0: जी। तो मैम मैं थोड़ा सा पहले आपसे आपकी ना डेली रूटीन के बारे में जानने जा रही हूँ, क्योंकि जो आप क्लिनिक में अपने सेंटर में डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स के साथ जो है मिलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीजों को फेस करते हैं, तो थोड़ा सा हमारे दोस्तों को उस शेड्यूल, उस रूटीन के बारे में बताइए।
1: देखिए मॉर्निंग में भी कुछ हमारे एक्चुअली ऑनलाइन प्रैक्टिस भी है और हमारी ऑफलाइन भी है, तो बेसिकली कुछ जो ऑनलाइन सेशंस होते हैं वो मॉर्निंग में भी हो जाते हैं अर्ली मॉर्निंग के दौरान,

0: क्लिनिक स्टार्ट होता है अराउंड 12, सो फ्रॉम 12 to 6 PM आई एम एट क्लिनिक. अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं. कुछ सेशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं तो कुछ सेशंस काफ़ी लाइट भी रहते हैं. हम हर एक क्लाइंट के साथ एक अलग प्रकार के साइकोलॉजिस्ट का रोल अदा करते हैं.
1: जी,
0: किसी को बहुत हंसाते हैं तो किसी को बहुत रुलाते हैं.
1: देख लीजिए दोस्तों कि कितना मुश्किल ये दौर है कि किसी को हंसाना है तो किसी को रुलाना भी है. जी,
0: क्योंकि हमारे सारे भाव महत्वपूर्ण है रुचिका
1: जी.
0: तो कई बार ना हम सोसाइटी में रहते रहते हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि जैसे कि हमारे एक इमोशन तो बहुत अच्छा और बाकी इमोशन तो बहुत खराब है, तो हम खुद ही अपने ही साथ अपनी भावनाओं के साथ बहुत ज्यादा मतभेद उत्पन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है. एंड बिलीव मी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब जनता में आई थिंक मैक्सिमम लोग इस प्रकार के ही सोच रखते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं, सिर्फ उनकी हेल्थ पर ही नहीं बट उनकी रिलेशनशिप्स में भी. लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतों के अनुसार उनको वो ऑफर किया जाता है थेरेपी सेशंस में, जो उनको हील करने में, उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने में उनको सहायता देगा. बस ऐसे ही करते करते दिन बीत जाता है, शाम हो जाती है, घर जाते हैं तो तब भी कुछ ऑनलाइन सेशंस होते हैं. तो बस रात के 9 बजे तक हमारा टाइम सारा सेशंस में जाता है.
1: जी, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य की, तो जैसे आप अलग अलग तरह के पेशेंट्स के साथ मिलते हैं, अलग अलग क्लाइंट्स के साथ मिलते हैं, तो खुद के मानसिक स्वास्थ्य को आप कैसे उस समय, क्योंकि अब आपने जैसे कहा कि कुछ क्लाइंट्स को हंसाना पड़ता है तो कुछ को रुलाना भी पड़ता है, उस तरह से आप उन्हें हैंडल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कई बार होता है दूसरों को देख के अपना मानसिक संतुलन जो है वो कहीं खो बैठते हैं, तो उसमें आप किस तरह से काम करते हैं?
0: देखिए, जब हम लोगों की ट्रेनिंग होती है ना, उस दौरान ये सीखना, समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें कब सामने वाले के शूज में जाना है और कब अपने शूज में वापस आना है.
1: जी,
0: एक होता है कि अगर आप अपने शूज में ही बैठ के सामने वाले व्यक्ति को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे तो आप उन्हें पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी जो परिस्थितियां हैं, उनका जो दर्द है, उनकी जो चोट है, आप उसे महसूस नहीं कर पाएंगे. इसलिए आप जो भी, जिस तरीके से भी अपने सेशन के फ्लो को एक रुख देना चाहेंगे, वो उनके लिए उतना इफेक्टिव या एफिशिएंट साबित नहीं होगा. इसलिए अपने जूते उतारना जरूरी है. जब हम सामने वाले के शूज में जाते हैं तब हम उनके पेन को, उनके दर्द को, उनके अकेलेपन को महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि वो कौन सी कड़ियां हैं जो अभी भी बंद हैं, जिनको अनलॉक करना जरूरी है, वो कौन से पीड़ाएं हैं जिनसे सबसे ज्यादा कष्ट पहुंच रहा है. तो कुछ इस प्रकार से जब आप उनकी परेशानियों का आभास ले पाते हैं तब अपने शूज में वापस दोबारा आना पड़ता है और उनके दुख को थोड़े डिस्टेंस के साथ देखना पड़ता है. ये एक कॉन्सेप्ट है जैसे डिटैचमेंट, आपने सुना होगा वर्ड, है ना
1: जी.
0: ये है वो वैराग्य जिसको आपको प्रैक्टिस करना होता है. सो दिस इज समथिंग दैट हेल्प्स मी अलॉट रुचिका
1: जी. तो कई बार ऐसा भी हुआ है आपके साथ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहता है जब हम किसी के साथ कोई केस डिस्कस कर रहे हैं या किसी की काउंसलिंग कुछ लंबे समय से कर रहे हैं लेकिन हमें उस पर कोई भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं नजर आ रही है, कोई रिजल्ट्स जो है वो हमें नहीं दिख रहा है, तो गुस्सा आ जाता है कई बार. तो ऐसा भी आपके साथ कभी हुआ है?
0: गुस्सा तो नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसके पीछे भी तो कारण ही होगा ना?
1: होंगे जी,
0: है ना
1: जी.
0: और हर चीज जो एग्जिस्ट करती है उसका अपना कोई सिग्निफिकेंस होता है
1: जी.
0: सो अगर कोई व्यक्ति उसी जगह पर रुका हुआ है और वो उस जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसका अपना एक पर्पज है
1: जी.
0: और वो पर्पज जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति वहां से आगे नहीं बढ़ेगा. जब तक उसको वहां उस परिस्थिति में रह के जो लेसन्स लेने हैं, जो लेसन्स को इम्प्लीमेंट करना है, जब तक वो नहीं करेगा तब तक वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा
1: जी.
0: जिसके कारणवश ये सोचना कि अब तो फ्रस्ट्रेशन हो रही है या ये तो डिसअपॉइंटिंग है या गुस्सा आ रहा है, ये तो थोड़ी बेवकूफाना वाली बात हो जाएगी.
1: जी बिल्कुल. तो मैं इस बात पे आपको इसलिए लेकर आ रही थी क्योंकि आज हमारी जो ये बातचीत रहने वाली है वो इसी से जुड़ी है. और कई बार क्या, हम आज के समय में बहुत सारे ऐसे केसेस देख रहे हैं अपने आसपास, खास करके बच्चों को या युवाओं की हम बात करें, तो बहुत जल्दी जो है हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी भी बात को एकदम से रिएक्ट करना, एकदम से उस पर रिस्पॉन्स दे देना, और उस वजह से जो है सिचुएशंस बनने के बजाय जो है वो बिगड़ जाती है
0: जी।
1: तो सबसे पहले हम इसी पे बात करने वाले हैं कि ये गुस्सा होता क्या है और ये किस तरह से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो उससे पहले एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और हम अपने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ेंगे।

0: दोस्तों, इस छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे बहुत ही प्यारे से और स्वीट से मेहमान। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी इस प्यारी सी बातचीत, प्यारे से कार्यक्रम मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। तो जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि गुस्से की वजह आखिर क्या हो सकती है, या गुस्सा जब भी हमें आता है तो कोई ना कोई रीजंस जो है वो जरूर रहते हैं। तो वही आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये गुस्सा होता क्या है और कैसे हम इसे जो है कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इस पे काम कर सकते हैं। मेन हम यही बोल सकते हैं कि इस पे किस तरह से काम कर सकते हैं।
1: सुरुचिका, गुस्सा सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड इमोशन है
0: जी।
1: हमारे जितने भी इमोशंस हैं, हमारा दुख, हमारा सुख, हम सरप्राइज हो जाते हैं, हम शॉक हो जाते हैं, हमें गिल्ट होता है, हमें एक प्रकार से कभी हमें करुणा में महसूस होता है, तो कभी हमें ईर्ष्या होती है। तो ये सारे ही इमोशंस जो हैं ये बहुत ही क्लियर है अपने आप में, लेकिन गुस्सा एक ऐसा इमोशन है अनफॉर्चुनेटली जो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, सोसाइटी में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड है, लेकिन सबसे ये सब होने के बावजूद ये सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड इमोशन है जिसके कारणवश बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होती हैं, सिर्फ अपने जीवन में ही नहीं पर अपने रिश्तों में भी, और रिश्तों से बाकी के जीवन में भी परेशानियां लाता है
0: जी।
1: गुस्से को ऐसा मानिए कि ये एक प्रकार का मुखौटा है, ये एक ऐसा मुखौटा है जो सामने वाले को कुछ सर्टेन चीजें महसूस कराना चाहता है, जैसे कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं डोमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी आवाज़ ऊंची हो जाती है जब हम गुस्सा करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हमारे अंदर एक प्रकार की पावर महसूस होती है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं पावरफुल हूँ। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट एंगर वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट टू अदर पीपल इन आर सराउंडिंग, कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इस एनवायरमेंट को, मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो। अब ये है मुखौटा, ये है बाहर। हमारे भीतर या समझिए कि प्रकृति में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो बैलेंस के आधार पे चलती है। अब इसी प्रकार से हमारे जो भावनाएं हैं वो भी बैलेंस को ही रीच आउट करती है। अब अगर हमारे बाहर, हमारे सराउंडिंग में, हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर में ये गुस्सा इस प्रकार से आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग, इट मीन्स हमारे बीनीथ, एज एन इस मास के बीनीथ या हमारे भीतर कुछ ऐसा है जहां पे व्यक्ति को लैक ऑफ कंट्रोल महसूस हो रहा है, जहाँ पर व्यक्ति को पावरलेस महसूस हो रहा है, जहाँ पर व्यक्ति को लग रहा है कि मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, वो हेल्पलेस महसूस कर रहा है, उसको लग रहा है कि अब तो सब कुछ गया। अब आप समझ रहे हैं कि
0: एक्सटर्नल,
1: डेफिनेटली एक्सटर्नल जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ व्हाट्स इनसाइड ऑफ अस। तो गुस्सा सिर्फ एक मास्क है, उसके भीतर ये सारे भावनाएं हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं, हेल्पलेसनेस कहाँ से आएगी, या एक प्रकार से पावरलेसनेस, या कुछ कंट्रोल नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो गया, ये भावनाएं कहाँ से आएंगी? ये आएंगी डिसअपॉइंटमेंट से, ये आएंगी हर्ट से, ये आएंगी फियर से। तो जब जब इंसान फियरफुल स्टेट में हो वो अपने फियर से फाइट करने के लिए गुस्से में आ सकते। आपने देखा होगा जब जानवर डर जाता है, उनको लगता है कि मुझ पर अटैक किया जा रहा है, तो वो अपने डिफेंस में आप पर अटैक कर देता
0: है। बिल्कुल,
1: यानी कि गुस्सा।
0: एग्जाम्पल के लिए हम सांप को ले सकते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन पे अटैक करने वाले, इसलिए वो
1: अटैक
0: फायर करते हैं।
1: डेफिनेट, तो वो एग्रेसिव बिहेवियर, वो वायलेंट बिहेवियर, वो हार्मफुल बिहेवियर के पीछे का क्या कारण है? फियर। सिमिलरली आप देखेंगे हर्ट, लेट्स से एक कपल है, चीट कर दिया, बहुत हर्ट हुआ, इतना हर्ट हुआ कि व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ गया, और गुस्से में उसने सामान तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया, रिश्ता तो तोड़ा ही
0: जी।
1: तो दैट फॉर्म ऑफ एंगर इज अगेन, इट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, फ्रॉम हर्ट। अब इसी प्रकार से अब लेट्स से पेरेंट एंड चाइल्ड है, बच्चे के मार्क्स कम आए, पेरेंट गॉट डिसअपॉइंटेड, पेरेंट्स क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे।
0: गुस्सा
1: तो एज मास्क एक जैसा ही है, पर गुस्से उस मास्क के पीछे का जो कारण है वो अलग अलग
0: कुछ भी हो सकता है।
1: तो जब आपने पूछा ना कि गुस्सा क्या है, तो गुस्सा तो एक बहरूपिया है
0: जी।
1: आपको उस बहरूपिये के पीछे छुपे हुए भावनाओं को समझना है और उनको एक्सप्रेस करना है। जब ये कर पाता है व्यक्ति, तब वो अपने आप में बहुत सेल्फ अवेयर हो जाता है, उसे पता होता है कि उसको एग्जैक्टली किस क्षण पर क्या चाहिए, उसे क्या बुरा लगा है, उसे क्या ठेस पहुंची है, वो अपनी बात को किस प्रकार से सामने खूबसूरती से सरलता से रख सकता है। कमिंग टू योर थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू कंट्रोल इट। पहली चीज तो ये कि हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे। ये बहुत ही अचंभे की बात है कि कैसे हमें लगता है जैसे हमें हर चीज को कंट्रोल करना है
0: जी,
1: जबकि प्रकृति में कुछ भी कंट्रोल होने के लिए बनाई नहीं। प्रकृति में हर चीज फ्लोइंग स्टेट में है। आप नदी को देख लीजिए, ओपन है
0: बिल्कुल।
1: समंदर को देख लीजिए, ओपन है। आकाश को देख लीजिए, बादलों को देख लीजिए, ओपन है। हवा को देख लीजिए, आप पकड़ के दिखाएं उसे तो स्वच्छंद स्वतंत्रता प्रकृति का अपना आचरण है और हम प्रकृति से भिन्न नहीं, हमारी भावनाएं प्रकृति से भिन्न नहीं, ये सब एक है। इसलिए हमें ये समझना है, हमें अपने पर्सपेक्टिव में, अपने नजरिए में इस बदलाव को लाना है कि हमारी जो भावनाएं हैं हमें उन्हें अंडरस्टैंड करके उनको फ्लोइंग स्टेट में रखना है। हाँ, उनका ख्याल रखना जरूरी है वरना वो बुरा मान जाएंगे, लेकिन कंट्रोल करने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है।
0: लेकिन अक्सर कहा जाता है ना कि जब भी कोई बच्चा ही गुस्सा कर दे तो पेरेंट्स हो या फिर हम जो भी देख रहे होते हैं वो तो यही बोलते हैं, भाई गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो। अक्सर यही बात
1: आपको पता है रुचिका, हमें कंट्रोल करने का भाव कहाँ से आता है? जब हमें लगता है कि ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है, जब हमें लगता है कि ये तो इतना अनसर्टेन है दैट वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, जब हमें वो चीज समझ में नहीं आती तब हम सोचते हैं कि इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए क्योंकि आगे क्या होगा पता नहीं और हम डर जाएंगे। एनीथिंग दैट इज अनसर्टेन विल लीड अस टू फील फियरफुल एंड फियर विल आस्क अस टू कंट्रोल एंड दैट विल लीड अस टू एंगर। तो ऐसा मानिए कि बच्चे का गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अगर पेरेंट को गुस्सा ही करना पड़ रहा है
0: जी,
1: तो ये बहुत दुख की बात है और इस बात में कोई सेंस नहीं,
0: बिल्कुल सेंसलेस। जी तो दोस्तों बहुत ही ये गंभीर सी बात, और ये शब्द अक्सर हम सभी बोलते हैं, नॉर्मल सी बात है ये, क्योंकि अक्सर हम यही बोलते हैं कि गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, गुस्सा आ रहा है तो उसे पहले दांतों से दबाया जाए, फिर खुद को वो किया जाए, मतलब कि कुछ भी लोग क्या करते हैं, बच्चे खास करके कोई दीवार से सर मार रहे हैं या पंच कर रहे हैं, मतलब किसी ना किसी तरह से अगर हम किसी और पे नहीं उतार सकते तो ऐसी चीजों से हम गुस्से को कंट्रोल करने की जो हम अक्सर कहते हैं तो वही चीज हम करते हैं। तो अभी आप सभी ने जाना दोस्तों कि गुस्से को कंट्रोल जो है वो हम नहीं कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं ना। तो मे बी इसके बारे में हम और भी जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि ये बहुत खास बातचीत आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम मन संवाद के माध्यम से। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं।

0: 91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और बहुत ही खास ये बातचीत कार्यक्रम मन संवाद एक प्रयास मन की ओर से आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी को।
0: जी दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं अपनी बातचीत में आगे। और गुस्से की बात हम अक्सर करते हैं, लेकिन आज आप जान रहे हैं कि असल में गुस्सा क्या होता है और किस तरह से उसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो मैम, अभी हमने जाना कि गुस्सा क्या होता है और ये भी जाना कि गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो इसे हम मैनेज कर सकते हैं, तो किस किस तरह से मैनेज कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, देखिए, जितना हम लोग गुस्से को अंडरस्टैंड करते हैं उतना ही ज़्यादा गुस्सा हमारे लिए सरल होता जाता है और वो हमारे लिए उस पाथ ऑफ एक्सप्रेशन को भी और सरल बना देता है। देखिए, आप ऐसे मानिए कि गुस्सा एक छोटा सा बच्चा है जिसको अभी तक किसी ने ध्यान से समझा ही नहीं
0: जी,
1: किसी ने उसको गौर से सुना ही नहीं, उसकी नीड्स क्या हैं उनको फुलफिल किया ही नहीं। तो अगर एक ऐसा बच्चा हो जिसकी नीड्स निग्लेक्टेड है, जो अनसीन है, अनहर्ड है, सप्रेस्ड है, तो उसे कैसा महसूस होगा, है ना? खराब महसूस होगा। और वो अपनी तरफ से फिर पूरा प्रयास करेगा ये बताने के लिए कि देखो मैं हूँ, आप मुझे इतना निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि मेरी एग्जिस्टेंस आपके लिए मायने ही ना रखे, आप मुझे कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, आप मुझे पसंद ना करें या पसंद करें वो एक अलग बात है, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। और उस चीज़ को आप तक कन्वे करने के लिए आपका ही गुस्सा आपके थ्रू, आपके माध्यम से, आपके व्यवहार में धीरे धीरे ऐसे उतरने लगेगा कि आपका जो एक सेंस ऑफ जजमेंट होता है वो बहुत पुअर होता चला जाएगा। सो देन योर एंगर विल चूज टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन अ डिस्ट्रक्टिव वे। इसीलिए आपने देखा होगा सोसाइटी में आजकल कितने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाले केसेस आ रहे हैं, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर फिजिकल अब्यूज इस कदर किया जाता है जिसका कोई मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। दैट्स कम्प्लीटली अनइमेजिनेबल। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अपने ही गुस्से को इतना दबाया है। अब वो बोल रहा है आपसे, चीख चीख के बोल रहा है कि तुम्हें मुझे देखना पड़ेगा, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते, और तुम मुझसे दूर भागोगे तो मैं तुम्हारे व्यवहार के थ्रू तुम्हारे रिश्तों में ऐसा पॉइजन स्प्रेड करूंगा कि तुमको तब तो मुझे देखना ही पड़ेगा, और अगर तुम तब भी देखोगे तो कोई बात नहीं, बाकी लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। सो इट बिकम सो ऑब्जर्वेबल एंड सो मेजरेबल दैट हाउ एंगर इज इम्पैक्टिंग समवंस लाइफ। तो अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की।
0: जी,
1: देखिए, एक्सप्रेस करने के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, जैसे कि नदी है, नदी फ्लो करेगी, अगर आप नदी पर बांध लगा देंगे तो क्या होगा, एक समय के बाद
0: वो तो फिर
1: वो बांध तोड़ के निकलेगी। यस, और जब वो बांध तोड़ के निकलेगी तब हर जगह डिस्ट्रक्शन जाएगा। इसी चीज को बचाने के लिए क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि हम इस बात को समझ सकें कि हमारे नदी का प्रवाह कैसा है, हमारे नदी का स्वभाव कैसा है, उसकी नीड्स क्या है। अब किसी का प्रवाह ज्यादा तीव्र हो तो उसकी नीड्स अलग प्रकार की होंगी, तब हमें प्रोबेबली मल्टीपल चैनल्स बनाने पड़ेंगे जहाँ पे उसकी तीव्रता को थोड़ा कम किया जा सके और उसके फ्लो को मेंटेन करते हुए, मैनेज करते हुए इजीली स्मूथली रिलीज किया जा सके विदाउट कॉजिंग एनी डिस्ट्रक्शन। तो दिस इज द वे कि वी हैव टू टेक मेजर्स विच आर कंस्ट्रक्टिव इन नेचर फॉर द इंडिविजुअल, और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। सिमिलरली, अगर आपका नदी ऐसी है जो जिसकी तीव्रता नहीं है, कम है, जो शांत स्वभाव की, तो ऐसी नदी के लिए हमें बहुत ज़्यादा
0: मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
1: बस इतना ही ध्यान रखना होगा कि वो प्रवाह का रुख रुकना नहीं चाहिए। जैसी प्रवाह का रुख रुकेगा वैसे ही अंदर जो लाइफ है पानी के वो मरनी शुरू हो जाएगी
0: जी,
1: एंड देन इट विल कॉज प्रॉब्लम्स, और फिर वो एक वॉल्केनो की तरह बाढ़ लेकर जब वो फटेगी आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको अपने स्वभाव को समझना है। जैसे जैसे आप अपने स्वभाव को समझेंगे, जानेंगे, आप समझ पाएंगे कि आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है और किन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। अब सोचिए, इस प्रकार की ये जो सेकेंड एग्जाम्पल हमने दिया, अगर ये चीज़ वो व्यक्ति इम्प्लीमेंट करने लग जाए जिसका नदी का प्रवाह यानी कि गुस्सा, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, तो उनके लिए ये चीज़ वो इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं दे पाएगी जो कि सेकेंड टाइप ऑफ पीपल के लिए दे सकती है। सो दैट्स हाउ इट इज, जितना अंडरस्टैंड करेंगे एंगर को उतना बेटर होता है। अब एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव और एक है डिस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्टिव हम सभी जानते हैं तो हम उसमें जाएंगे नहीं. बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव वेज ऑफ एक्सप्रेशन की एंगर के लिए. देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपका प्राइमरी इमोशन क्या है, उस मास्क के बिनीथ क्या इमोशन है. इज इट फियर, इज इट हर्ट, इज इट डिसअपॉइंटमेंट. आप समझ पाएंगे फिर कि आपको अपने फियर को एक्सप्रेस करना है, कि हर्ट को एक्सप्रेस करना है, कि डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस करना है. जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे फिजियोलॉजिकल लेवल पर भी बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम कर रही होती हैं, जैसे कि हमारे ब्रीदिंग में चेंज आ जाएगा, हमारी हार्ट बीट में चेंज आ जाएगा, हमारे जो मसल्स हैं वो एकदम स्टिफ हो जाएंगी, टाइट हो जाएंगी, हमें अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होगी. ऐसे लोग जिनका बीपी लो हो रहा है और अगर उनके आसपास के लोग उनकी मदद नहीं कर रहे और उनका सिरदर्द और बढ़ा रहे हैं, तब देखिए उनको जो गुस्सा आता है सारा बीपी लो एक साइड और सडनली उनको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है कि तुम चुप हो जाओ. राइट. तो ये सब फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे भीतर हो रहे हैं. अब ये डिपेंड करता है कि उस दौरान में हम क्या इंग्रेडिएंट्स, इट्स लाइक अगर एक यज्ञ चल रहा है और आप उसमें क्या आहुति डाल रहे हो, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि वो उस यज्ञ की अग्नि को बढ़ाएगा या कम करेगा. तो आप ऐसे सोचिए कि आपका जो गुस्सा है वो भी एक हवन कुंड के प्रकार ही है.
0: कम हो गया,
1: आप हवन कुंड ऐसा मानिए.
0: तो वही आ गया ना, आग में घी डालने वाले.
1: हाँ, अब आप आग में पानी डाल रहे हैं या आग में घी डाल रहे हैं, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स. सो क्या चीजें हैं जो घी का काम करेंगी आपके लिए, आप उनकी एक लिस्ट बना ले और अपने आसपास जो क्लोज वंस हैं उनको शेयर कर दे कि देखिए जब हम गुस्से में हो तो ये घी का काम करेंगे, इनको मुझसे दूर रखें, दीज आर हाईली इन्फ्लेमेबल फॉर मी. और उन चीजों की भी लिस्ट बना ले जो पानी का काम करेंगे और वो भी शेयर कर दे, और अपने पास उन चीजों को रखें भी जो पानी का काम करने वाली है. यानी कि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, आपके लिए क्या चीज काम कर रही है, आपके गुस्से के लिए क्या चीज काम कर रही है, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या चीज अच्छे से काम कर रही है और क्या नहीं कर रही है. ये दोनों में डिफरेंस पता होना रुचिका बहुत ज्यादा जरूरी है और ये जीवन को बहुत सरल बना देता है. अब जो चीजें पानी वाली हैं आप उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें. मे बी गो आउट एंड रिलीज योर एनर्जी, क्योंकि गुस्सा जो है दैट इज एनर्जी, गुस्से में हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा आ जाती है. तो आप अपना एक स्पेस ले लें, एक थोड़ा टाइम ले लें और आप उस एनर्जी को रिलीज कर दें. आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप भस्त्रिका कर सकते हैं या कपालभाति कर सकते हैं, वो आपके गुस्से को रिलीज करने में मदद करेंगी. उसके बाद आप अनुलोम विलोम से करते हुए भ्रामरी आ सकते हैं और भ्रामरी के बाद आप थोड़े समय के लिए बेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. इस फ्लो में अगर आप ये चीज़ें करते हैं, गिवन दैट कि किसी प्रकार की लोगों को एलर्जी ना हो जिसमें ये प्रकार के प्राणायाम उन्हें इम्पैक्ट करते हो, जैसे प्रेगनेंसी हो गया या कोई सर्जरी हुई हो या फिर ईयर इन्फेक्शन हो, इन बातों का जरूर ध्यान रखें हमारी ऑडियंस. तो अगर ये सब चीजें इस तरीके से फॉलो करी जाएंगी तो आप देखेंगे कि आपका गुस्सा शांत हो रहा है. गुस्से में ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल होता है रुचिका, क्योंकि ब्रीदिंग अपने आप चेंज हो जाती है और ब्रीदिंग से हमारी सारी चीजें इंटरनली कनेक्टेड होती हैं. तो अगर हम प्राणायाम इसमें इन्वॉल्व करते हैं या एक्सरसाइज जिसमें ब्रीदिंग, रैपिड ब्रीदिंग की जरूरत पड़ती है, एक्सरसाइज इन्वॉल्व कर दें या जैसे रनिंग हो गया, रनिंग इन्वॉल्व कर दें, तो इस प्रकार की चीज़ें हमारे गुस्से को रिलीज होने में बहुत सहायता दे सकती है. देर इज़ वन थिंग दैट आई प्रैक्टिस पर्सनली, आई गिव माई सेल्फ अ चैलेंज, अ मेंटल चैलेंज, कि या तो इस गुस्से को अभी गिव अप कर दो, इस गुस्से को कनेक्ट विद द प्राइमरी इमोशन राइट अवे, और अगर नहीं कर रहे हो तो तब तक के लिए पुशअप्स करते रहो. सो देर इज अ फिजिकल चैलेंज, लाइक फिजिकल एक हमारे पास टास्क है, एंड देन देर इज अ मेंटल टास्क. नाउ आई हैव टू पिक और से माई ईगो हमारे अहम को चूज करना है, वॉट इज इट दैट आई वॉन्ट टू गिव अप फर्स्ट, द साइकोलॉजिकल चैलेंज और द फिजिकल चैलेंज. फिजिकल चैलेंज तो हम ऐसे मान लेते हैं कि हम तो इसको तो गिव अप करने का कोई ऑप्शन नहीं है. तो यानी कि आई विल कीप ऑन डूइंग पुशअप्स तब तक जब तक हमारा गुस्सा साइकोलॉजिकल लेवल से गिव अप ना हम करते, सरेंडर जब तक हम ना करते. एंड दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली वर्क सो वेल फॉर मी. ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके लिए
0: सब चीज काम
1: करे, इसीलिए हमने बोला कि अपने आप को जानना, अपने आप के साथ बैठना, अपनी भावनाओं को अंडरस्टैंड करके अपने लिए, खुद के लिए एक डीएस्केलेशन प्लान क्रिएट करना, ये बहुत जरूरी है। तो ये सभी को हमें लगता है करना चाहिए, और इस तरीके से आप डेफिनेटली अपने गुस्से को एक सही दिशा दे सकते।
0: बिल्कुल सही कहा है मैम ने। तो जिस तरह से एक्सरसाइजेस मैम ने बताई, मैं ये पूछने भी वाली थी कि हाँ सभी लोग जो है उसको तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ को अपने अपने इश्यूज, हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं।
1: तो डेफिनेटली देखिए, एक्सरसाइज नहीं है तो आप प्राणायाम कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: प्राणायाम नहीं है तो फिर आप जर्नलिंग कर सकते हैं। आप अपने गुस्से को लिख कर अपनी डायरी और पेन लीजिए और उसमें सब कुछ लिख दीजिए, और उसके बाद उस पेपर को फाड़ दीजिए, जला दीजिए, उड़ा दीजिए, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू, बट सिंपली डिस्ट्रॉय दैट पीस ऑफ पेपर जहाँ पर आपने वो लिखा है। टॉक टू समबडी, शेयर अबाउट इट, रिलीज दैट एंगर, एंड देन थिंक ऑफ इट, व्हाट वाज इट ट्राइंग टू कन्वे टू मी।
0: जी, और सबसे खास बात की ये सब करने के लिए हमें अपने आप को जानना
1: बहुत जरूरी है,
0: बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम जानते ही नहीं है। हम अपने आस पड़ोस के लोगों का या अपने दुश्मनों के बारे में सब कुछ जानते होते, लेकिन अपने अंदर क्या चल रहा है ये हम नहीं जान पाते हैं। हमारी अपनी क्या जो खुशियां हैं या अपने क्या शौक हैं, क्या टैलेंट हमारे अंदर है, या तो कई बार हम दूसरों के चलते उसे बाहर निकाल नहीं पाते हैं, किसी को बता नहीं पाते हैं, या तो हम खुद ही नहीं जानते हैं। तो इन चीजों के लिए, या कोई भी हमारी हेल्थ इशू है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बात है, तो जब तक हम अपने आप के बारे में प्रॉपर तरीके से नहीं जानेंगे, खुद को समय नहीं देंगे, तब तक हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इन बीमारियों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, या अपने गुस्से को समझना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा होता है, उन्हें खुद को पता होता है कि भाई अगर मेरे को गुस्सा आ गया ना तो मेरा गुस्सा बहुत खराब है, वो पहले से ही अपने जो जान पहचान के होते तो उन्हें बोल कर रखा होता है कि भाई जब मेरे को गुस्सा आ जाए तो या तो ऐसी कोई हरकत, जैसे आपने कहा ना कि वो घी डालने वाली बात ना करे, तो वो पहले से उन्होंने कन्वे किया होता है कि भाई उस समय मेरे से कोई भी जो है बात ना ही करे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि गुस्से में मैं क्या क्या बोल जाता हूँ, या क्या क्या मैं रिएक्शन जो है वो कर जाती हूँ या कर जाता हूँ। तो इसी तरह से हमें जो है मैनेज करना जो है अपने गुस्से को, तो उसके लिए छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो और भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
2: जब

0: नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस छोटे से प्यारे से ब्रेक के बाद। आप सभी सुन रहे हैं गुंजन रेडियो 91.2 FM, रुचिका और प्रियशी के साथ मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर।
1: जी दोस्तों, तो हमारा जो ये प्रयास है ये भी आपके मन की ओर तक पहुंच रहा है, ये हम उम्मीद करते हैं।

0: आइए इस बहुत ही खास बातचीत को जो है आज के कार्यक्रम में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने गुस्से को मैनेज कर रहे हैं। तो मैम, हमने बहुत सारी बातें की गुस्से के बारे में, तो गुस्से को कैसे मैनेज करना, जब गुस्सा आ ही गया उसे कैसे मैनेज करना है, कैसे हम उसको एक प्रोसेस में ला सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा भी कुछ हो सकता है कि हमें गुस्सा आए ही ना, हम उस स्टेज तक पहुंचे ही ना कि हमें मैनेज करने की जरूरत पड़े। क्या ऐसा भी कोई टिप्स है या ऐसा कोई रूल है जिससे हम उससे बच सकते हैं?
1: देखिए रुचिका, गुस्सा वैसे अपने आप में एक बहुत ही साधारण सा भाव है। हमारे हम जब पैदा होते हैं तो हमारे पास हर प्रकार के भाव होते हैं और ये हमारे इंस्टिंक्चुअल डिसीजंस के लिए या फिर हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमारा तो ये मानना है कि भावनाओं में कभी भी भेदभाव नहीं करने चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है कि क्या इससे हमारी सेहत को हार्म होता है, तो येस, डेफिनेटली हार्म होता है। इसलिए हम अपने ओर से जितना प्रयास कर सके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, वो हमें करना चाहिए हर संभव प्रयास के नज़रिए से। अब जैसे आपने बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमें गुस्सा ना आए
0: जी,
1: तो हम ये बोलेंगे कि गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस गुस्से में कितना बहना है ये हमारे हाथों में है, और उस गुस्से से हम कितना इम्पैक्ट हो ये भी हमारे हाथों में है। यानी कि अगर हम चाहें तो अपनी अवेयरनेस के माध्यम से हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें गुस्सा आता है। देखिए, प्रैक्टिकलिटी के आधार पर या रियलिटी के आधार पर ऐसा समझिए कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हर कुछ है, सब चीज़ें हैं, अच्छाई भी है और बुराई भी है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जिनसे हम डिसएग्री करते होंगे या जिनको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते होंगे। बट जीवन में इस प्रकार से तो हम जी नहीं सकते जहाँ पर ये चीज़ें हो ही ना कम्प्लीटली, क्योंकि जीवन तो ऑल और नन में काम नहीं करता, इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल शेड्स। तो हमें हमारे अंदर उन सभी शेड्स के प्रति एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और बस इतना ध्यान रखा जा सकता है कि अपने वातावरण में ऐसे लोग हों जो हमारी बातों को समझें, और अगर समझ ना पाए तो कम से कम उनका आदर रखें, उनकी इज्जत रखें। सिंपली देखा जाए तो अधिकांश लोगों को गुस्सा तब दो तीन एस्पेक्ट्स में आता है। अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है और उनको अपने ऊपर काम करने की बहुत आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गुस्सा तब आता है जब कुछ वो इनजस्टिस होता हुआ देखते हैं, तो ऐसे लोगों के भीतर एक प्रकार की एक्सेप्टेंस और ओपननेस होनी भी ज़रूरी है, और ये समझना ज़रूरी है कि वो अपने आप को उस इनजस्टिस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, वॉट दे कैन डू इज़ दे कैन क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज अराउंड देम। वो अपने वातावरण में एक स्क्रीनिंग करें और देखें कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस प्रकार के इनजस्टिस को इधर टॉलरेट कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर खुद वो इनजस्टिस कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखें। इस प्रकार की हेल्दी बाउंड्री जब रहेगी तब इंसान अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर पाएगा, अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर पाएगा, और जब इंसान खुद में हेल्दी रहेगा तभी वो इस प्रकार के इनजस्टिस के अगेंस्ट कुछ काम कर पाएगा, कुछ एक्शन ले पाएगा, कुछ मदद कर पाएगा सोसाइटी में। तो इसीलिए एक प्रकार से वो दूरी बना के रखना ऐसे लोगों से, ऐसे वातावरण से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ यही चीज़ें हैं, और उसके अलावा अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना, अच्छा खाना, अच्छी सोच, अपने आप को रिमाइंडर्स देना, एंकर्स सेट करना, एंकर्स ऐसे कि हमें कौन से इमोशन को ज़्यादा ध्यान देना है हम उसको चुन सकें, हम ये चुन सकें कि हम अपने जीवन में प्रेम से ऑपरेट करें, लव से ऑपरेट करें, रादर देन फियर से या फिर इनसिक्योरिटी से या डिसअपॉइंटमेंट से। क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट तो आपको हर जगह मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है और कभी भी मिल सकती है, क्योंकि आप खुद भी लोगों को डिसअपॉइंट करते होंगे। इसलिए अपने अंदर वो ओपननेस, वो एक्सेप्टेंस और रियलिज्म रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, तो वो चीज़ें हमें जाननी होंगी कि जिस जिस वजह से हमें गुस्सा आता है, तो उससे फिर हमें खुद ही थोड़ा सा जो है बैक स्टेप लेने की ज़रूरत है।
1: बिल्कुल, आप उन चैनल से एंगेज ही मत करिए जहाँ पर आपको पता है पांव रखते ही आपको
0: फिसलना
1: होगा। बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, तो बिल्कुल दोस्तों, हम वैसे भी जब हमें लगता है कि आग से हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा, तो हम जानबूझकर उसके आगे नहीं जाते हैं। तो गुस्सा भी उसी तरह से समझ लीजिए कि उससे भी कोई ना कोई हार्म जो है हमारी जो है मानसिक हेल्थ को होगा या हमको होगा किसी, क्योंकि मानसिक हेल्थ भी हमारी, मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा ही है, तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव जो है पूरी तरह से होता है।
1: वो फिजिकल हेल्थ में जरूर कन्वर्ट होगा
0: जी।
1: जितने भी लोग हैं जो अपने गुस्से को दबा के रखते हैं उनके भीतर आप देखेंगे आज से कुछ सालों के बाद उनके भीतर बीमारियां आएंगी ही आएंगी
0: जी। तो अगर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो ये सारी जो भी हम आप सभी तक बातें पहुंचाते हैं या जानकारियां पहुंचाते हैं, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप इस पे जरूर काम करेंगे या करते होंगे। तो आज का ये बहुत ही खास जो सेशन था आप सभी के लिए, उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। और दोस्तों इसी तरह से और भी ढेर सारी जानकारियां आप सभी तक पहुंचाएंगे स्टेप बाय स्टेप जी। दोस्तों तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ एक और खास बात आप सभी जानते ही हैं वैसे तो, लेकिन फिर से बता देते हैं कि अगर आपको लगता है दोस्तों कि आपको भी ऐसी कुछ बातों से फेस होना पड़ रहा है और शायद हमारी इस बातचीत में भी आपको ज्यादा अच्छे से समझ ना आया हो, कुछ बातें छूट गई हो, तो आप हमसे जो है वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और ना हो तो आप क्लिनिक भी आ सकते हैं। आप वहां सेंटर जाके भी अगर आपको काउंसलिंग सेशंस की जरूरत है या कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान चाहिए तो आप आराम से वहां बैठकर जो है अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो हमारा नंबर रहेगा
1: 9354134057।
0: और कहाँ पर आना होगा हमारे दोस्तों को?
1: वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर, शीला गांव, धर्मशाला, कांगड़ा।
0: जी दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने नोट कर लिया है और ये बहुत ही खास बातों के साथ साथ आप सेशंस भी मैम से ले सकते हैं। तो आप सेंटर भी जा सकते हैं या फोन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज का ये सेशन यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।

0: के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें साकार करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का अवसर सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यसभा में आज जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद परिसर में हमारे संवाददाता से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के प्रत्येक निवासी पर अब हर सरकारी योजना का लाभ पहुंच रहा है।
1: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में

0: भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: वहीं सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। श्री गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में हर वर्ष लगभग 1,80,000 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है। रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति ने आज इस फैसले की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
2: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
2: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है, हम मजा कर रहे हैं इधर?
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ, मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, सर, सर मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का, अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए, आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 रुपीस का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो, 30,000 का?
8: हाँ
9: ले दो।
8: सच्ची?
9: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
9: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की ईएमआई आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: पागल हो क्या, यहाँ मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है, आप कह रहे हो ईएमआई भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो।
9: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समां हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहनी सोहनी पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ते मैं थोड़ी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदा ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम इंजॉय करते रहो पंजाबी गीत।

91.2 MHz रेडियो कुंजन धर्मशाला तू सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल तहे खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
2: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिर कर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है? हम मजा कर रहे हैं इधर।
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ, मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना, तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले, तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 rupees का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो,
10: 30,000 का?
8: हाँ
10: ले लो।
8: सच्ची?
10: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
10: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की EMI आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: पागल हो क्या? यहाँ मेरे पास जेब में 10 rupees नहीं है। आप कह रहे हो EMI भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो,
10: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?

नमस्ते नमस्कार, 91.2 MHz पर ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहां सारी इस वक्त कार्यक्रम कने जुड़ी होने न, कने अगर नहीं जुड़े होने तो जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम कने जुड़िया। तुहां सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम दा जेड़ा समय तुहां तक रहिंदा है से रहिंदा है 2 से 3 बजे तक। तो जरूर इस कार्यक्रम च तुहां जेड़ा तुहांदे प्यारे प्यारे पहाड़ी गीत हैं, पहाड़ी फरमाइशां से सुनी सकते, कने गलबात भी जरूर अहां कने करी सकते। शुरुआत अहां करी ती हुए कने इसी कने नंबर भी जरूर तुहां तक पहुँचाई दे स्टूडियो दा, क्योंकि नंबर तुहां तक पुजेगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकते या टेक्स्ट मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज करी सकते। तो जरूर नंबर जेड़ा है से तुहां सारे नोट करा, नंबर है

जीरो एक आठ एक एक सात जीरो नौ एक इस नंबर पर तो कॉल करा जरूर। बाकी जड़े से तो तक कहाँ पहुँचाई थे, बाकी तो समझदार हैं तो जरूर इसी करने हाँ अपने कार्यक्रम का जड़ा आगाज है से करना है, क्योंकि गीत संगीत जड़े से यहाँ की जिंदगी बड़ी अहम भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि हर दिन अगर हाँ दिने की शुरुआत कर देन या कोई भी काम कर देन तो जरूर चाहे से घर फंक्शन है चाहे कुछ भी है तो हाँ गीत संगीत जड़े से सुनना बड़ा पसंद करते हैं। कने हर कुसी दी अपनी अपनी पसंद होंगी तो जरूर अपनी पसंद का जड़ा गीत है इसे तो हाँ इस कार्यक्रम च सुनी सकते। इसी कन्ने एक छोटा जिहा विचार है या कुछ लाइना न से जरूर तुह तक पहुँचानिया न तो श्रोतो पैसा रखने वास्ते यहाँ बैंक है, इसी कन्ने सोने की गल करिए तो सोना रखने वास्ते भी यहाँ लॉकर हैं। कने अगर अहाँ इसते हटी करी गल करिए अगर अहाँ अपने दिले की गल रखनी है या अपने दिले की जड़ा गल है कोई भी गल है, क्योंकि इंसान है इंसान हमेशा कुछ ना कुछ कोई गल्ला बात होंदिया से अपने जड़ा भाई बहन या अच्छा दोस्त है उन्हें तक जरूर शेयर करता है। पर सही इंसान तक कहाँ अपनी गलबात रखते न या विश्वास, क्योंकि विश्वास जड़ा है ना उससे अहम की जिंदगी बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। कने इसी कन्ने जरूर अहाँ थोड़ा दिया क्या वर्दे न कने कार्यक्रम की जड़ा शुरुआत है से करी लेंदे न फिर जड़ा बाकी दिया गल्ला न से तुह तक ले करी आते न तो जरूर सुनते निसा प्यारी दिया गीते जो या शुरुआत जो अहाँ बोली सकते, क्योंकि शुरुआत अगर एक प्यारे दे गीत कन्ने होइया तो कार्यक्रम का जड़ा सफर है से और भी प्यारा जड़ा है से लगता है।

આહોલા દેન રેડિયો ગુંજન ધર્મશાલા તેક અને તો હા સારે ઇસ વક્ત કાર્યક્રમ સુણા દેન આપની રેડિયો તો શશી કન્ય તશો તો ફરી ત્યાં વાપિસ જડે સે આપની ગાલબાત ઉપર પૂછી હોન કને તો હા સારે ભી મેરી ગાલબાત કરને જરૂર જડે સે જુડી હોણે ન તો જરૂર હર દિને દી આપની ખાસિયત હે આજકણા જેડા દિન હૈ ઇસદી આપણી ખાસિયત હૈ કને કિસ પ્રકાર હા હર દિન જો ખાસ બનાંદે ન યા ક્યા હા આપણે જીવન છ નયા કરદે ન યા કિસ તરીકે ને હા આપણે જીવન જો આગે બઢાંદે ન 5 અગસ્ત 2026 દી ગાલ કરીએ બુધવાર દાય દિન તો હા સારી જરૂર એન્જોય કરા દેણે ન કને महीना जिड़ा अगस्त दा है से शुरू हो चुका है कने इसी कने समय दा जिड़ा है से पता नहीं चलता है तो जरूर कहीं ना आज समय ऊपर ही गलबात करिए क्योंकि समय हर जगह अपनी भूमिका जिड़ा है से अदा करता है पैसा कने समय जिड़ा है से हंदी जिंदगी च कुथी ना कुथी अहम भूमिका भी अदा करता है पर कई बार होता ना कि हाँ जिड़े से ठीक है पैसा कमाना भी ज़रूरी है सफलता दी ओर जाना भी ज़रूरी है पर इसी कन्ने पैसा जिड़े से बोलता है कि मैं अगर खोई आंदा है या पैसा जिड़े से कुछ ही गुम हो आंदा है या हाँ पैसा नहीं कमाई पाते न या पैसा जिड़े से खोई भी आंगा तो मैं वापिस जिड़े से आई सकता क्योंकि पैसा हाँ दोबारा जिड़े से कमाई सकते पर जिड़ा वक्त है या समय है सह जो यही बोलता है कि अगर मैं चली या याजकना दिन आंदा चली या तो मैं तुह जो वापिस जिड़े से नहीं मिलना है तो इसी कन्ने समय जिड़े से अहां जो क्या सीख दे करी जाता समय अहां जो ये सीख दे देदा कि मेरी जिड़ा कदर है से ज़रूर तो हाँ करा पर अहां हर समय अपनी जिड़ा जिंदगी है से भाग दौड़ भरी बनाई हो या हाल समय नहीं है या समय है भी तो हाँ जिड़े से समय जो निकाल देनी या रिश्तों की गल करिए या परिवार की गल करिए या कोई भी काम में अगर हाँ उस समय अनुसार कर देन तो जरूर हाँ उस सफल होंगे न चाहे खाना भी अगर हाँ समय अनुसार नहीं बनाते न तो कुछ ना कुछ जिहड़ा अहां दा टाइम टेबल है से पूरा ही थोड़ा जिहा बिगड़ी आंदा है तो इसी अनुसार अगर अहां समय दे अनुसार चलते हैं तो समय दे अनुसार हर काम अच्छा लगता है तो जरूर तुहां भी समय दे अनुसार इस कार्यक्रम कन्ने जुड़िया क्योंकि पहाड़ी कार्यक्रम है तुहां सारे भी अपनी पसंद दा जिहड़ा गीत है से इस कार्यक्रम च सुनी सकदे कन्ने अहां भी कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाना है कन्ने अगला जेड़ा गीत है अगली जेड़ा फरमाइश है से अहां तक पहुंची हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा ना भी जरूर तुहां तक पहुँचाते न तिना दा नाव है चरणदास जी कने से रहने वाले न खन्यारा ते तो जरूर तिना तक अहां एक गीत फरमाइश पहुँचा देन तुहां सारी भी इंजॉय करा

0: अगले श्रोता वहाँ कन्ने बिल्कुल जुड़ चुके हैं ना, कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, नमस्ते जी।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: धन्यवाद मैडम जी, असर ठीक ठाक न मैडम जी, तुसा सारे ठीक ठाक मैडम जी, स्टाफ आले?
0: हां जी सारे ठीक ठाक हैं जी। तुहा कुथु ते बोला दे, कने तुहंदा ना के है जी?
1: सुनील कुमार बोले मैडम जी, कोठियां जलोट ते।
0: जी ता सुनील जी, क्या हाल चाल है कोठियां जलोट आले आंदे?
1: बढ़िया मैडम जी, हुन टाइम ता धुप खिली गयो, ठीक ठाक धुप चल गयो, लगी गयो है
0: जी। अच्छा धुप जे वैसे बड़ी प्यारी लगी गयो ना जी।
1: हां जी, राती दा खरी बरखा हुई
0: जी। जी जी, बरखा ठीक ठाक हुई है राती।
1: हां जी हां जी मैडम जी।
0: जी ता कोठियां साइड ते नहीं पिया चोरां दा हल्ला?
1: पुछा मत मैडम जी, गल्ला पुछा मत मैडम जी।
0: जी जी, क्योंकि न्यूज़ च हर दिन जड़े से यहां सुना दे ना जी, चोरियां दा बड़ा।
1: पुछा मत मैडम जी, ये पता नहीं अली, मतलब रोटी 8-9 बजे रोटी खाए के उछन अली निंदर, मतलब सोने तैयारियां करनी है ना, बस चोरां दा हल्ला नहीं पूना पूना।
0: जी जी,
1: बुरा हाल मैडम जी, पुछा मत हंदे बलाके दा ता।
0: जी ता थोड़ा दे सतर्क रहने दी जरूरत है ना जी।
1: हां जी हां जी मैं अपन चलो इयां दे सतर्क डरांदे, अपन बरखा लई पोंदे ने, बरखा नहीं सुमदा मैडम जी करी ना कुछ।
0: जी जी, बरखा ता वैसे ही पता नहीं चलदा,
1: पता नहीं चलता ता और ला पे जांदा मैडम जी की नहीं।
0: जी जी,
1: आजकल मैडम जी अना ती ना कमाना मुश्किल है मैडम जी।
0: जी सही है ना, कि चाहे से कोई भी है नशा बड़ा जड़ा से हर दिन हां सुन दे ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी मैडम जी।
0: अगर देखा, अगर हाँ चोरी करा दे न, अगर चोरी दी जगह हाँ मेहनत करना ता कितना अच्छा है ना जी।
1: हाँ जी
0: जी, पर सही है ना कि मेहनत करना नहीं चाहते।
1: नहीं चाहते मैडम जी, मेहनत
0: पर मेहनत करी करी अगर जी जी
1: जी, बस उठ पटांग लिया मैडम जी, बस चोर करनी चोरी करनी है राती
0: जी।
1: कुठी दा मैडम जी चोरी हो गई, भांडे सूर नहीं छड़े मैडम जी।
0: जी दिखा ला इतनी ज्यादा
1: भी ले ये सिलेंडर रख लो ना सब के।
0: जी जी
1: हां जी,
0: तो सुनील जी आज यहां जेड़ा कार्यक्रम च गल बात करा दे ना, जरूर ते दे ऊपर भी गल बात करी लेन दे ना जी।
1: हां जी, जीवन जी। और समय दे बारे च गल करा दे मैडम जी तुसा।
0: जी मतलब हां जेड़ा गल बात करा दे थे से करा दे थे समय दे ऊपर ना जी।
1: हां जी मैडम जी।
0: जी तो तुहें क्या लगदा, दिखा पैसा जड़े से यहाँ कमाई सकते पर समय जड़े से यहाँ
1: कभी मतलब बीतियां कभी था वापस नहीं होता मैडम जी।
0: जी जी
1: हाँ जी मैडम जी।
0: तो तुहें तुहें और क्या लगता कि यहाँ समय दा जड़ा सदुपयोग है से किस तरीके ने करी सकते युवा या बच्चे या जड़ा पेरेंट्स हैं तिना, जो क्या तुहें संदेश जड़े से देना चाहेंगे कि समय दा सदुपयोग किस तरीके ने करना?
1: दिखा मैडम जी, कोई मैडम ऐसा मैडम जी जी हेल्प करिए मैडम जी, उसकी हेल्प करो ठीक है
0: जी।
1: या कोई हेल्प करी तो फिर बंदे क्या बोलते मैडम जी, इस दी हेल्प कीती मतलब एक तो हेल्प करा ना पीछे रिपीटा मत मैडम जी।
0: जी ये तो बिल्कुल सही बोलिया, अगर तू हो कुछ मैडम जी
1: जी। देखा ना मैडम जी, हूं मैं एग्जाम्पल दिंदा, हूं कुछ मंदिर च दान कर दे मैडम, मन नहीं लिया मतलब अपने ग्रां च मैडम कोई हां कोई माता रानी का जग लिया कराना
0: जी,
1: चलो अपनी श्रद्धा मैडम जी जो भी है चावल दे दिया जो भी है, उनके मैं देखी ना मतलब लेडीज वगैरह तो बोले हाँ टीन दिते मैं टीन दिते तो हूं तो चलो टीन दिते पर गलाने की क्या जरूरत है मैडम जी।
0: जी अपनी श्रद्धा का जेड़ा तुहते तुह करी सकदे सही तुहा करा ना जी।
1: हाँ जी चलो, एक तो दया मत ना फिर दया दे दे तीसरी

0: बार बार पीटता मैं तो मैडम जी।
1: जी,
0: थैंक यू
1: जीता
0: मैडम जी।
1: सुनील जी, आज तुम्हारा कुंदिया गीत सुनना पसंद करके।
0: गाना सुना ही नहीं मिंजू एक मैडम जी। पम्मी ठाकुर दी आवाज है, सच वो गलांदे मेरे गोरा जी दे शिव जी,
1: जी जरूर,
0: दिन
1: गीत
0: सर्दियां दी कोई।
1: जी जरूर, गीत
0: हाँ
1: तुहां तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
0: धन्यवाद मैडम जी। नमस्ते
1: जी
0: जी।
1: जी कानवी दशमलव 2 MHz पर ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहां सारी कार्यक्रम सुना दिन अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। बाकी जिहड़ा श्रोता न सभी जरूर कॉल पर कॉल करा देना, तिना दी कॉल भी यहाँ जरूर लैनी है। कन्ने जिहड़ा तुहां दियां फरमाइशां न सभी जरूर तुहां तक पहुँचानी है न। अगले श्रोता कन्ने कर देना गलबात। हैलो,
0: हेलो सचिव मैडम जी, नमस्ते। ठीक
1: नमस्ते जी, स्वागत है
0: ठाक है ना?
1: जी। बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी।
0: अच्छा। और आज मैडम
1: जी और
0: जी कौन टॉपिक लिया तो? हाँ, समय पर,
1: हाँ जी
0: समय बड़ा बलवान, समय
1: जी जी
0: सदुपयोग करना मैं कहता मैडम जी।
1: जी
0: हाँ जी।
1: जी समय का
0: हाँ
1: जिहड़ा सदुपयोग है इस यहाँ किस तरीके ने करी सकने
0: हाँ
1: ना
0: जी हाँ
1: जी।
0: जी। इस तरह वेस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी, जितना ही टाइम है ना, समय
1: जी
0: तो निकल जाता, पर जेड़ा अपना टाइम होता ना तेरे अंदर
1: जी
0: मैडम जी। सर
1: जी
0: बोला अच्छा था, करना था कार्य कर, सब कुछ बढ़िया।
1: जी दिखा, अगर एक फैमिली दी गल करिए तां अगर हाँ
0: जी
1: अपनी फैमिली कन्नै जेड़ा पल बिताए हो ना तां कुथे ना कुथे से यादां दे तौर पर संजोई करी रही आंदे ना जी।
0: हाँ जी जी मैडम जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक
1: जी
0: लाया मैडम जी।
1: कन्नै
0: हाँ जी
1: अगर पर आज कने दौर दी गल करिए तां ये चीज़ बिल्कुल कम है ना जी,
0: जी मैडम जी, मैं
1: क्योंकि
0: भी
1: हर
0: थोड़ा
1: कोई
0: लेट हुई थोड़े प्रोग्राम में सुनने, सवेरे तो 4 बजे शुरू करेंगे ना।
1: जी
0: आज
1: जी
0: थोड़ा मैं जरा हॉस्पिटल गया, ठंडा दवाई लेना दिया खाने पे, हूँ पूजा कर मेरे फोन कितना रेडियो फटाफट।
1: जी
0: हाँ
1: जी
0: जी,
1: जी चलो
0: आप
1: अच्छे
0: दूसरा
1: का
0: करना चाहते हैं मैडम जी?
1: जी, काम करना भी
0: बड़ा
1: जरूरी
0: अच्छा
1: है
0: टॉपिक लिया मैडम जी तो। हाँ
1: जी। धन्यवाद जी तुहांदा
0: हाँ
1: जी। तो आज तुहां कुंदिया
0: आज
1: गीत
0: मैडम जी तो अपनी पसंद सुना, थोड़े बहुत वधिया ने पसंद गीत।
1: जी जरूर जी, मेरी पसंदा दा
0: मैडम
1: गीत
0: बड़ा
1: ही
0: बड़ा धन्यवाद तो मैडम जी।
1: जी तुहांदा भी। अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने भी कर देना गल बात। हेलो हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्ते सती
1: नमस्ते जी, तुंदी आवाज़ बिल्कुल कम हो दी जी।
0: जी।
1: जी जी बिल्कुल ही कम है
0: ठीक है, कल
1: जी, थोड़ी थोड़ी ठीक है जी।
0: छुट्टियां पर थे? हाँ
1: जी कल छुट्टियाँ पर थे जी
0: देखिए, कल तुम्हारी है ना? हाँ भाई, थोड़ी देर लगाया ना, कभी नहीं सुना प्रोग्राम,
1: जी
0: कल भी थोड़ी देर सुनिया।
1: जी अच्छा सुनिया थोड़ी देर।
0: और ठीक है ना?
1: हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तुहां कुथु ते बोला देख ने तुहां दा ना किया है जी।
0: महाराज बोलना
1: जी अच्छा
0: हर
1: दाढ़ी ते
0: रहना
1: बोला दे
0: मेघनाथ।
1: जी मेघनाथ जी। जी तो मेघनाथ जी, तुहां क्या अपने विचार रखना रखने ना आज तुहां की, तुहां क्या लगदा समय दी कदर अहां किस प्रकार करी सकदे
0: समय दी
1: जी।
0: कदर करना चाहिए, जेड़ा
1: जी जी जी
0: निकली है टाइम से वापस आना नहीं है ना,
1: जी जी
0: जेड़ा तो अदेवाल समय है तेरे मुताबिक तू चल रहा, तो
1: जी
0: सारे कोई अगर कोई मंत्र है दसवां सलाह भाई है तू गलत
1: जी
0: कर रहा, समय
1: जी
0: अनुसार चल रहा सब सारी बनना
1: जी
0: करा है ना,
1: जी
0: ये है।
1: जी ता मेघनाथ जी, आज तू हाँ कुंदिया अपनी पसंदा गीत सुनना चाहेंगे।
0: आज सुनाई दिया राम का संदेशा आया गठड़ी बन बुढ़ी,
1: जी ता राम दा संदेशा आया बुढ़िए बन गठड़ी ना जी।
0: हाँ जी हाँ
1: जी
0: जी
1: तो गठड़ी ता बनना पौनी ताई ता थोड़ा दिया पूजा पाठ करके ताई, क्योंकि
0: क्या है,
1: जी जी
0: ये तो गठड़ी गठड़ी बनी गई वापस चले हुई ये ताता ठीक है कि नहीं, गठड़ी पक्की बची याद है त्या जगह देख रही वापस नहीं होता कोई भी।
1: जी ये तो
0: The person you are speaking with
1: श्रोताओं कॉल
0: is
1: जिड़े
0: not your
1: से
0: call.
1: डिस्कनेक्टेड ਹੋਈ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਨੇ ਤੁਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ।

श्रोताओं तो वह सारे ही सुनिया ये गीत। इसी गीत के बाद हाँ फिर ते वापिस अपनी गलबात उपर पुजी होना। तो फेसबुक के माध्यम ने अहाँ तक जेड़ा लिसनर हैं से जरूर कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, कने फेसबुक जेड़ा लाइव है सभी जरूर जुड़ते हैं। तो इंदू जी ने जेड़ा मैसेज किया है सै फेसबुक के माध्यम कने किया है कि समय की कदर अगर अहाँ करके ताई समय जेड़ा है से अहाँ की कदर करना है। तो ये तो लाइना बड़िया प्यारियां ने कि अगर अहाँ समय की कदर करके ताई समय अहाँ की जेड़ा है से कदर करनी है, क्योंकि समय के अनुसार अगर अहाँ चल गए ताई अहाँ समय के अनुसार सारे काम करी सकते, चाहे से प्रकृति की गल करिए, क्योंकि प्रकृति का ख्याल रखना भी अहाँ का ही काम है। अगर अहाँ समय के अनुसार प्रकृति जो साफ सुथरा रखते हैं या पेड़ पौधे लगाते हैं या जेड़ा कोई भी कूड़ा है से अहाँ नदी नाले च नहीं फेंकते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रकृति अहाँ की साफ कने सुंदर जड़े से रहती है। कने प्रकृति हर दिन अहाँ जो कोई ना कोई संदेश दे करी जाती है, फिर भी अहाँ अगर उस संदेश जो नहीं समझते न तो यहाँ पर निर्भर करता है कि अहाँ किस प्रकार अपनी प्रकृति का जड़ा ख्याल है से रखा देन। कने इसी कन्ने समय हर चीज़ है, समय हर चीज़ का मोहताज है बोली सकते। समय जड़ा से सबसे बड़ा अहाँ की दौलत है, दौलत भी समय अगर फीकी है, क्योंकि समय का जड़ा चक्कर है ना से बड़ा ही प्यारा है। जिन्ना कुदरत का नियम है, दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है, तो हर दिन का जड़ा शेड्यूल है से बनिया। कुदरत का हर नियम जड़ा से खास है, पर हाँ किस प्रकार इन नियमों का पालन करते हैं ना या समय की कदर करते हैं या समय का सदुपयोग किस प्रकार करते हैं। हर रुत जानती है, हर रुत आती है, सीजनल अनुसार हर चीज़ चलती है, पर हाँ किस प्रकार जड़ा सीजनल सब्जियां न या फ्रूट हैं तिना का फायदा लेंदे न। प्रकृति अहाँ जो हर दिन कोई ना कोई जड़ा नया दौर जरूर दिंदी है, पर से यहाँ पर निर्भर करते हैं कि यहाँ किस प्रकार अपनी प्रकृति की रक्षा करते हैं ना। तो इसी कन्ने अहाँ जो भी तुहदा जेड़ा ध्यान है से फ्री ते आई आता है, कन्ने मन करता है कि जरूर तुह जो फ्री ते गीत दी और ले करी चलते हैं ना। तुह सारे का भी मन करा तो होना है कि उन गीत सुनी लीए तो थोड़ा जहा कार्यक्रम का जेड़ा माहौल है से चेंज हो जाना, क्योंकि श्रोता इंतज़ार पर होंगे तो जरूर तिना का इंतज़ार खत्म करते हैं ना, कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते हैं ना।

0: तो तंदु हजारे सुनिया गीत ए फरमाइश ए फरमाइश अह तक पहुँची है इंदु जी दी कने से रहने वाले न सिद्धवाड़ी ते तो जरूर तिना तक कहाँ ये फरमाइश पहुँचाई कने अगले जेड़ा श्रोता न तिना कने करते न गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते
0: जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: हाँ जी ठीक ठाक
0: जी। तुह कुछ दे रहने वाले न कने तुहंदा ना क्या है जी?
1: मेरा नाम तनवी है कने मैं टिकरी के रहने वाली है
0: जी। तनवी जी, क्या हाल चाल है टिकरी वाले आंदे?
1: सब ठीक
0: जी। ता तुह क्या कर दे?
1: मैं पढ़ाई कर दी स्कूल में
0: जी। कुछ क्लास च पढ़ दे तनवी जी? तो हाँ
1: मैं 8th क्लास तक
0: जी। अच्छा, 8वीं क्लास च तो हाँ पढ़ दे ना जी? जी। ता तनवी जी, आज हाँ जेड़ा गल बात करा देन से करा देन समय ऊपर, तो तुहें क्या लगता विद्यार्थी जीवन च तुहान तुहां क्या अपने जेड़ा विचार हैं से रख देन कि समय दी यहाँ कदर किस प्रकार करी सकदे? हेलो
1: हेलो। हाँ जी
0: जी। ता तनवी जी, क्या विचार हैं तुहंदे जी कि समय दा सदुपयोग तो हम पढ़ाई करते न, इस टाइम तो हमें छुट्टियां पिया होनी है ना जी?
1: हाँ जी
0: जी जी। तो तुह किस प्रकार अपने समय दा सदुपयोग करा दे, खेल या खेलने जो अपना समय दे देन या पढ़ाई जो समय दे देन या बाकी अपनी फैमिली जो समय दे देन, तो किस प्रकार तुह समय दा जेड़ा सदुपयोग ऐसे करा दे?
1: पढ़ाई भी करें खेल लगी भी
0: जी जी। पर तो इस गल जो मन दे कि समय दा सदुपयोग करना हम वास्ते कितना ज़्यादा जरूरी है
1: जी? जरूरी है
0: जी। अच्छा, इस गल ते तो हाँ सहमत हैं कि समय दा जेड़ा सदुपयोग ऐसे करना हम वास्ते जरूरी है ना जी?
1: जी जरूरी है
0: जी। उन तो हाँ 8वीं क्लास च पढ़ते न, तो हर सब्जेक्ट दा हर कोई भी सब्जेक्ट है ना जी, तो हमें जितने भी सब्जेक्ट हैं ना जी, ता
1: मेरे नोट
0: जी 9 सब्जेक्ट हैं। हेलो
1: हेलो। हाँ जी
0: जी जी। 9 सब्जेक्ट हैं तो हंदे
1: जी।
0: ता हर सब्जेक्ट दा टाइम पीरियड बने है ना जी स्कूल च?
1: हाँ जी बने
0: जी। ता उसी

0: थोड़ा कर दे, ज्यादा कर दे।
1: थोड़ा कर दे।
0: जी, ताता बड़ी अच्छी गल है कि थोड़ा यूज कर दे, क्योंकि फोन दा दूर ऐसे है ना कि अहाँ अपनी फैमिली जो भी समय नहीं दे दे, अहाँ अपने च ही बिजी हैं, तो अहाँ दिख दे होने अपने आस पास भी, या कई बार अहाँ खुद च भी झांकते ना जी कि अहाँ खुद ही अपनी फैमिली जो समय दे देना, या अपने माता पिता ते क्या सीख लै देना जी। जी, तो तन्वी जी, आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करगी
1: रंग बिरंगे
0: जी। बड़ा प्यारा भजन है जी, जरूर तो हाँ तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहदा।
1: जी।
0: जी, तशो तो फेसबुक के माध्यम ने इंदु जी यहाँ जो मैसेज जरूर करा देना, कमेंट जड़ा इसे जरूर करा देना। तो इंदु जी तुहंदा जड़ा से दिल ते धन्यवाद है कि तुहां हर जड़ा प्रोग्राम है ते जो सुन देना कन अपना जड़ा प्यार है से जरूर दिन देना, ता बहुत ही प्यारा जड़ा से बोल देना। ता जरूर धन्यवाद जी तुहंदा, इतना ज़्यादा तुहां प्यार दे देना कन बाकी जड़ा श्रोता ने सभी जरूर अहां जो कॉल पर कॉल करा देना, तिना कन्ने भी कर देना गल बात। हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना
1: हां जी, आप ठीक हो?
0: जी? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुह कुथु ते बोला दे कने तुहंदा ना क्या है जी?
1: हां जी, हम टंगा से बोल रहे हैं और तनिषा।
0: जी, अच्छा टंगा ते बोला दे ना जी।
1: हां जी
0: जी, ता तुह क्या कर दे
1: हां जी, अरिता मैं पढ़ा
0: जी? पढ़ देना
1: हां जी, ये
0: जी। ता आज तुहा कुंदिया गीत जड़े से सुनना पसंद करके
1: बढ़िया जी, तुड़का लाए के गा रही हैं।
0: जी? अच्छा, जरूर बढ़िया जो तुड़का लगा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा। तशो तो तुह सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दोष रशी करने, इसी गलबात करने अहाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ा देना कने तुह जो ले करी चल देना अगली फरमाइश दी ओर। तो ज़रूर ये फरमाइश अहाँ पहुँचानी है मेघनाथ जी तक। प्यारा दिया भजन है, तो सारी भी इंजॉय करा कने इन्हें सुन दे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पंथी।

દર્શતો ફરી ત્યાં વાપિસ પહોંચી અને તો તક ગાલબાત કરના સમય દી જેડા ગાલબાત અહ કરા દે ને તો સમય દીઓ રગ રહા અપની નજર દોડાં દે ને તો 2 બજી કરી 50 મિનિટ જેડા કાર્યક્રમ જો અહીંયા ને 10 મિનિટ હલ બચ્યા ને તો જરૂર સમય દે અનુસાર ચલ દે ને કને સમય દે અનુસાર ચલના ભી જરૂરી હૈ तो जरूर जिड़ा मणि महेश यात्रा है 2026 दी से शुरू हुई हो है कनती दा जिड़ा ऑनलाइन पंजीकरण जिड़ा से 5 अगस्त यानी कि आज ते सुबह 10 बजे ते जिड़ा से प्रारंभ हुई है। तो जरूर जितने भी जिड़ा भक्त जन से जरूर पंजीकरण जड़े से करी सकते कने मणि महेश दी जड़ा यात्रा है से जरूर करी सकते। इसी कने हिमाचल प्रदेश ने 2-3 माह जड़ा हिम केयर दी जगह जड़े से नई स्वास्थ्य बीमा नीति जड़े से लागू कीती है। कने हिम केयर योजना च जड़ा शामिल लोग जितने भी हैं तिना दा जड़ा डाटा है से जरूर शामिल करना है। कने पात्र जड़ा प्रत्येक परिवार जिहड़ा ना 10 लाख दा जिहड़ा स्वास्थ्य बीमा जिहड़ा तिदा लाभ जिहड़ा से ले सकदे। तो 10 लाख जिहड़ा परिवार हन इस च शामिल रहने न कने मरीजां दा जिहड़ा अस्पताल भर्ती जिहड़ा है होने पर जिहड़ा से बीमा कवर जिहड़ा से इहदा लाभ जिहड़ा से उठाई सकदे न। तो श्रोताओं ये जानकारी तुहां तक पहुँचाई है कने तुहां जरूर ये जानकारियाँ भी सुना देने न कने जेड़ा गल बात है सभी सुना देने न। तो इसी गल बात कने जानकारी कने अहां अगे बढ़ते न कने अगली जेड़ा फरमाइश या अगला जेड़ा भजन है से तुहां तक पहुँचाते न। तुहां सारे भी इस प्यारे दे भजन जो इंजॉय करा कने इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

परशोत्तम तन्वी जी तक आएगी ते भजन पहुँचाया कने इसी भजन ते वादा हो फिरी ते अगली जड़ा फरमाइश है से ज़रूर तुह तक पहुँचा देने तुह सारे भी इंजॉय करा कने इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

दर्शकों तो सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश कार्यक्रम का जोड़ा समय है सियाजो जरूर हूँ बोला था कि तुह इस कार्यक्रम से जोड़ा अनुमति है से ले लिया क्योंकि समय के अनुसार चलना जरूरी है। समय उपर ही अह गलबात करा दे थे तो समय का जोड़ा मान सम्मान है से अह भी जरूर करना है कने समय के अनुसार चलना है। जाते जाते फरमाइश तुह तक पहुँचाते न तो सारे भी इस फरमाइशा जो इंजॉय करा कने अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति कने हमेशा खुश रहा कने अपना जोड़ा काम में से समय अनुसार जरूर करा।

0: गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा।

0: ना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है? पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
2: हर

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: और एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
2: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरें ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है? हम मजा कर रहे हैं इधर।
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, सर मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000
9: रुपीज
8: का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो,
8: 30,000
9: का?
8: हाँ,
9: ले।
8: सच्ची?
9: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
9: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की ईएमआई आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: पागल हो क्या? यहाँ मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है। आप कह रहे हो ईएमआई भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो,
9: फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?
8: Yeah.

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो। बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास, पति, ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
2: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि एक ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है, हम मजा कर रहे हैं इधर?
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना, तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले, तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 रुपीज का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो, 30,000 का?
8: हाँ
9: ले दो।
8: सच्ची?
9: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
9: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की EMI आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: पागल हो क्या, यहाँ मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है, आप कह रहे हो EMI भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो।
9: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?

शोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुर्रा सचिन कपूर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर हाजिर हुआ हा। बहुत बहुत स्वागत है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं तो है सब उम्मीद करने है तो है सब घरे भूणे ने अपने घरे राजी बाजी भूणे खुश भूणे और तंदुरुस्त भूणे हैं श्रोताओं। कार्यक्रम मंज बड़ा बड़ा स्वागत है मोटा मोटा स्वागत है सभी हुने वाले रहे सभी श्रोतागण रहा बहुत सारी जानकारी ले कर है तुंदे वीडियो वे बिच हाजिर भुच गया हैं अपना गादा कार्यक्रम लेकर और तो सब श्रोता कॉल भी कर सकते हैं 7088809 पर नंबर आक मुके फिर शेयर करना हाँ 7088809 पर कॉल कर सकते हैं। तो श्रोता बलदन है कि जहने भी घर हो इन तो खुश भुच करी इन तंदुरुस्त तो है नहीं लेकिन खुश भुच करी इनको को वापिस पुजने रहा कोई पता ना बुंदा हा। जी बिल्कुल ऐसा खबर तो बात तो कुछ है दिल वल्लू करता हा कि वापिस पुजने रहा कोई पता नहीं है ड्यूटी था वापिस इच्छू करता तो पटवारी और खाई मकिया सो कार लुड़ गए श्रोतों और पटवारी ने मौत बुझ गए श्रोतों। सरकारी जिम्मेदारी निभाने निकले तो आके कर्मठ अधिकारी रा सफर किया सो दर्दनाक हादसे भी खबर बने गोशो तो। और चंबा खास पटवार सर्कल में तैनात पटवारी प्रदीप कुमार वे सड़क दुर्घटना में गया सो मौत बुझ गए शो तो। पूरी रात प्रविजन पुलिस और सहकर्मी तेरी तलाश मारे लेकिन भेगा गरली मुई लिंक रोड पर गया सो 20 फुट गहरी खाई में पलटरी कार किया सो मुड़े शतों और तह पलटरी कार किया सो हर उम्मीद किया सो तोड़ी देते दसु करते इन शतों प्रदीप कुमार जी आ सो सोमवार जो सरकारी कार्य रे सिलसिला था कि सो प्रागपुर तहसील और देहरा गुछूरत हो आवश्यक कार्य निपटाने के बाद वापस घरों वापस इच्छू कर दो देव संजा घर तक न पूछने पर परिजन आया कि ऐसा फ़ोन करो लेकिन कोई संपर्क किया सुना हुआ यानी कि काफ़ी देर बुझ गई थी तक गनियाँ फ़ोन करते ही ना भाई गनियों जी टाइम पता बंदा यह तो है फ़ोन करके दस इनके हाँ सो फलाने टाइम में किया सो पूछेगा ना और तस टाइम में भी ना पूछता तथी बाद गरी कि ऐसा ज़रूर फ़ोन कर दे है ना श्रोतों और अगर है फ़ोन ना चुकना और फोन ना चुकन ता करखन करख दिक्कत भी चुकन दे हा शो तो है ना और सूचना मिल दे कि सो रक्कड़ पुलिस है कि सो स्थानीय मनु सोगे बात भर के सो मार्ग सर्च ऑपरेशन चलाओ लेकिन बैगा के सो शो तो गहरी खाई में किया सो दुर्घटना ग्रस्त कार के सो मुड़े शो तो मोहतरा कोई भरोसा नहीं है कि कहने किया सो क्या बुझे गए छक्का से इंसान सो गया है ना। तो बहरहाल कार्यक्रम रा आगाज कर लेंदे इन शोतों और आगाज तो बाद तुंदी सभी री फरमाइश है कि सो है ज़रूर पूरी कर ले बने रहा जुड़ी रहा असु सोगी वीडियो गुंजन सोगी गूंज अपने बन रही और गूंज आज इतने भी प्यारे प्यारे श्रोता असुगी बन रहे नहीं।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 दुई मेगा हर्ट्स पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो ये सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम आऊँ सचिन कपूर लेकर हाजिर बचुगत सभी रे रेडियो सेट में तो चलिए जी अब फेसबुक रे जरिए भी किए सो लाइव है अब चिकन दिन छतों का जो कि अब जमाना तब भरा यानी कि जमाना अब फेसबुक करा तब क्या करना तस हिसाब हो गए कि आंसू आंसू भी अगू बढ़ना पैना हाँ जी क्या है बढ़ते भी रहते हैं और करते भी रहते हैं अपनी औरतों कुछ ना कुछ प्रयास फिलहाल इन श्रोतगण के आंसू आंसू की रेडी हिंद श्रोतों तइयों पहले कनेक्ट कर लेंदेन और उस दिन कुल बल्लू दिन ते कड़ी थों बल्लू करते हैं इंदे श्रोतागण हेलो नमस्कार जी
1: नमस्ते जी नमस्ते
0: हेलो
1: हाँ जी हेलो
0: हाँ जी नमस्कार जी
1: नमस्ते जी नमस्ते
0: नमस्ते जी नमस्ते कौन कौन बोल रहे हैं और थोड़ी जोर तो हम बल्ला कड़ी तो हम बोल रहे हैं हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी मेलू कौन बोल रहे हैं और कड़ी तो हम बोल रहे हैं
1: कनेरे बोलू कर दे बीना
0: कनेरे तो क्या नाम दसो जी बीना
1: बीना बीना
0: अच्छा बीना और बीना जी ठीक ठाक राजी बाजी
1: बढ़िया बढ़िया तो है सुना कि नहीं किने तो है
0: ऐ भी ठीक ने जी खरे ने छैल ने
1: पर सबर खदर लग रही दरसाला
0: हेरा जी बरसाले तो कह भी ले सकता हूँ योल किनारी तो इच्छु कर दो था योली बरखा लग रही थी था इस किनारी सिद्ध बाड़ी किनारी बरखा ना थे तो बरसाले तो कुछ ही बंदा ना कि अगर

0: खनैरे बुले तो खनैरे थोड़ी करे उन्हें पौनी हाँ जी उन्हें तो आप बरसाला लगू रहा तो लगू रही ना बरखा जी
1: हाँ
0: जी
1: सोना
0: अच्छा जी मैं तो भीर जी कुन दिन गई थोड़ा तू सू दसा फिर दसा क्या गीत बोलो हाँ जी हेलो अच्छा ठीक है जी है समझ गए कौन देने गीत दसो कर देने इस गीत का ना जिंदड़ी नमानी
1: हाँ जी
0: ठीक है बीना जी जरूर तुस वो गीत होना लै है ना जी
1: धन्यवाद जी
0: ठीक है जी धन्यवाद धन्यवाद। शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम आर जे सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव हुनु कर दें जुड़े सकते हैं तो ऐसा भी 7088809 पर नंबर आख मौके फेरे 7088809 पर तो सब शोधा कॉल कर सकते हैं शोधो और अपना पसंदीदा गीत किया सुनी सकते हैं बरा लाइए इस गीत का आनंद लेंदन और तथों बाद छो तो अगली कुछ जानकारी तू हो गया है जरूर शेयर कर ले साझा कर ले।

0: हकीकत बयान शतों की बाग और बगीचे सब तो उखे पे गए है ना। तो कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा लेकर आऊँ सचिन कपूर हाजिर बुआ शोतों तुंदे वीडियो सेट में कुछ एक खास जानकारी के अनुसार तुझ गया है जरूर शेयर कर दें साझा कर दें ताकि तो सब श्रोता के अनुसार होगी जरूर बनी सकन और जुड़ी सकन। खास कार्यक्रम रा उद्देश्य ये है कि अपने मनु तकर के सो गदयाली बोली मंच अपनी बोली मंच के सो जानकारी पहुंचाना और जो मनु असू के कनेक्ट होंगे न सो भी फेसबुक रे माध्यम तो किया सो श्रोता तक पहुंचाना कि भाई साहब आज भी किया सो रेडियो मंच इतने मनु के सो कनेक्ट होंगे हैं खासकर अपनी बोली में कनेक्ट होंगे श्रोताओं का। हिमाचल प्रदेश में दो थों त्राई महीने में के असो हिमकेयर रीजा का नई व्यवस्था बीमा नीति के असो लागू होने हैं श्रोतों। इति में हिमकेयर योजना में शामिल मणु व डाटा छटनी शामिल होने हैं श्रोतों। पात्र प्रत्येक परिवार जो 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलना है श्रोतों। इति में 10 लाख परिवार जो शामिल करना है श्रोतों यानी कि 10 लाख परिवार के ना सो शामिल भुने हिन मरीज रे अस्पताल में भर्ती भुने रा बीमा कवर व लाभ किया सो भी मोलना है श्रोतों। तो जानकारी रा पिटारा भी यही मोलना है श्रोतों। इंदे श्रोता करना सो के कनेक्टेड थी लेकिन डिसकनेक्ट हो गया हिन दवाले। अगर कोई श्रोता कनेक्ट बंदन तो ज़रूर एहत सो के किया सो बिल्कुल कनेक्ट करते हिन बहरहाल इंदे अगले श्रोता सो के कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: नमस्कार सचिन जी।
0: हेलो नमस्कार जी।
1: नमस्कार सचिन जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी नमस्ते।
1: और ठीक ठाक है ना?
0: हाँ जी बहुत बढ़िया जी। तो पहले तो ठीक ठाक ना?
1: हाँ तो भी ठीक है ना।
0: अच्छा जी कौन दिन गीत हो ना तुसु? ठीक है जी ठीक है जरूर होना ले। नमस्ते चलिए श्रोता इंदे अगले श्रोता सो के कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी। माफ करा श्रोतों डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो सब बन रहे इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो की कुछ एक खास जानकारी के श्रोतों सो ये चली रहनी इन बने रिया सो की हैं लेके चलते हैं। तो सब भी जो कार्यक्रम मंच यही जानकारी रा सिलसिला चलते रहना है और यही असु तुसु भी की असु चलते रहना है श्रोतों। तो थोड़ी करी हगों बढ़ते हैं और उन्हें तू सब भी वही प्यारे दे गीत वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच गूंज अपने पन रही।

श्रोता एफ एम 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप कैंसो चल रही तो बहुत बहुत स्वागत है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा हार्दिक अभिनंदन है। चलिए थोड़ा करे और आगो चल दें श्रोतों और कार्यक्रम जो आगो बढ़नते हैं श्रोतों अगली जानकारी तो होगी शेयर करते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा जो मजबूत करने वास्ते के श्रोतों कई बड़े बदलाव करना का चुकर दिया वे राज्य वे दूर दराज क्षेत्र में के जड़ी शिक्षक सेवाएं देने वास्ते तैयार ने न ऐसे जनजाति स्कूल वे वास्ते के अब शिक्षा विभाग नई नीति तैयार के शुरू कर दिया श्रोतों ताकि बच्चों जो कि ऐसा स्कूली शिक्षा प्रदान हुआ। जम्मू कश्मीर मॉडल रिसर्च पर इस संबंध में राज्य जो शिक्षा विभाग नई नीति तैयार किया सुखरू कर दे है जत्थों जटेरे तहत श्रोतों स्कूलों में अध्यापिका स्कूलों में क्या सो अध्यापकों भी कमी जो दूर करने में मदद मिलने और बच्चे जो बेहतर स्कूली शिक्षा तो वंचित ना रहना पैना है श्रोतों। अगली जानकारी थो रूबरू करवंदन प्रदेश व विभिन्न स्कूलों में तैनात टीसीटी शिक्षक एच

शोतो अन्य जानकारी भी तुझ हो गया है, जरूर शेयर कर ले, साझा कर ले, तो सब बन रहे समय आर जे सचिन कपूर सो के कार्यक्रम हिंदी अपनी गप के न सो बिल्कुल लाइव हूँ गड्डन चना आप अपने अपने रेडियो सेट में वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच ताइए जी कार्यक्रम जो आगो बढ़ते न और उन्द ने प्यारे दिया गीत तुंदे सभी रे रेडियो सेट में।

শুধু এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাঁ টিউন কর রা আর আমি সচিন কাপুর কার্যক্রম হিন্দি আপনি গপ্পা যে হোস্ট করু করদা হ্যাঁ শুধু রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা মা বহুত বহুত স্বাগত আগমকে ফেরে সবই হুনে আলে রা সবই শ্রোতাগণ রা তাইয়ে জি শুধু হবে কুছ এক আর জানকারি হোগে কেন সো তুসু হ্যায় রুবরু করবাই দিন हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था में बड़ा बदलाव भूणा के ऐसा चल रहा है शो तो अब शहर में बड़े होटल शिक्षण संस्थान और अन्य बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान अपने इड़ी थो किया अपने जड़ी जड़ी तैयार है शिक्षण शिक्षण संस्थान हिन बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान हिन है ना बड़े बड़े होटल ने शहर है तिया अपने तड़ी थों के निकलने वाले कचरे रा निस्तरण स्वयं करना है शतों इति वास्ते की ऐसो तिन्यों अपने परिसर में बायो प्लांट ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर स्थापित करना है आप जड़ी गीला कचरे थों जैविक खाद तैयार बुचगाने है शतों है ना और नगर निगम है कि ऐसो इस दिशा में कार्यवाही शुरू कर दीती है शहर बड़े कचरा उत्पादक रा सर्वे शुरू कर दिता है शो तो ये फैसला अदालत और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वे निर्देश वे बाद किया सो लियो है शो तो ये कदम अदालत और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रे निर्देश वे बाद किया सो लियो है दिशा निर्देश तो बाद किया सो लियो है शो तो और भी अन्य जानकारी इन जो तुझो गया जरूर शेयर कर ले साझा कर ले तो सब बनून दे बन रहे ने समय आ जाए सचिन कपूर सो गए और कार्यक्रम तो अबे 5 बजे फिर मिलते हैं इन शो तो कुछ खास बुलेटिन लेकर ही फिलहाल अपने इस गाते कार्यक्रम तो मुझे यानी कि सचिन कपूर जो दे तो सब इजाज़त गंदे गंदे बोलना चाहो कि हर किसी को क्योंकि ऐसा प्यार होगी ज़रूर रे शो तो माँ बाप री सेवा अवश्य करा ज़रूर करा हर पल करा हर कदम करा हर दिन करा हर सेकंड करा माँ बाप री सेवा बुजुर्ग री सेवा छो तो पर्यावरण जो सुरक्षित जरूर रखा छो तो पर्यावरण जो जरूर बचा इंसानियत जो जिंदा जरूर रखा इन शब्द था सचिन कपूर ले लेने तो सुतो इजाजत हंस दे रहे मुस्कुरन दे रहे और रेडी गुंजन मार जे सचिन कपूर जो यही हुन दे रहे और हुनन दे रहे नमस्ते धर्मशाला।

0: ऑडियो जंगल।
1: सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस खास बुलेटिन में। आइए बुलेटिन को बढ़ाते हैं श्रोताओं आगे और कुछ एक खास जानकारियों के साथ जो है वो आपको रूबरू करवाते हैं। 10 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर, 2 महीने में लागू होगी नई नीति। मणिमहेश यात्रा के लिए आज से शुरू होगा ऑनलाइन पंजीकरण। हिमाचल में ITI प्रशिक्षण, जापान के एक्सपोजर विजिट कर पाएंगे श्रोताओं। इको टूरिज्म साइट्स में लेने में दिलचस्पी नहीं, देश में बनेंगे 15 म्यूनिसिपल शेड सर्विस सेंटर। टीजीटी दे सकेंगे आप HPF एंड ASS सेक्शन ऑफिसर एग्जाम। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 2 से 3 महीने में हिमकेयर की जगह जो है वो नई व्यवस्था बीमा नीति लागू होगी। इसमें हिमकेयर योजना भी शामिल होगी श्रोतों। जी बिल्कुल, ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हिमाचल प्रदेश में अब 2 से 3 महीने में हिमकेयर की जगह नई स्वास्थ्य बीमा नीति जो है वो लागू होगी। इसमें हिमकेयर योजना में शामिल होंगे शामिल लोगों का डाटा छंटनी जो है वो कर शामिल किया जाएगा श्रोताओं। पात्र प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। इसमें 10 लाख परिवारों को शामिल किया जाएगा। मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने पर बीमा कवर का लाभ मिलेगा। मणिमहेश यात्रा 2026 के सफल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 5 अगस्त को प्रातः 10 बजे से आज से जो है वो सुबह 10 बजे से जो है वो लागू हो चुकी है श्रोताओं। श्रद्धालु यात्रा के लिए जो है वो अपना पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर सकेंगे। ITI में अध्ययनरत प्रशिक्षुओं को जापान के एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा श्रोताओं। इसे लेकर तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस विजिट के माध्यम से प्रशिक्षु आधुनिक कार्यप्रणाली, औद्योगिक संस्कृति और तकनीकी में जो है वो बेहतरीन होंगे और नज़दीक से जो है वो उसे समझ सकेंगे। छात्र विदेशी कंपनियों की आधुनिक तकनीकी अनुशासन और काम करने के तौर तरीकों को करीब से जो है वो सीख सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा को मजबूत करने के लिए कई बड़े बदलाव करने जा रही है सरकार श्रोतों। राज्य के दूरदराज क्षेत्र में जहां पर शिक्षा सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं, शिक्षक जो हैं वो सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे जनजाति स्कूलों के लिए जो है वो अब शिक्षा विभाग नई नीति तैयार कर रहा है ताकि बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान की जा सके। जम्मू कश्मीर मॉडल की तर्ज पर इस संबंध में राज्य का शिक्षा विभाग नई नीति तैयार कर रहा है जिसके तहत स्कूलों में अध्यापकों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी और बच्चों को बेहतर स्कूली शिक्षा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में तैनात TGT शिक्षक HPF एंड AS सेशन ऑफिसर परीक्षा दे सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने 22 TGT और सहायक को NOC प्रदान कर दी है श्रोतों। विभाग ने हिमाचल प्रदेश के फाइनेंस एंड अकाउंट्स सर्विसेज HPF एंड AS सेक्शन ऑफिसर परीक्षा 2026 के लिए 2 शिक्षकों को राहत दी है श्रोतों। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ठोस कचरा प्रबंधन स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव होने जा रहा है श्रोतों। अब शहर के बड़े होटल, शिक्षा संस्थान और अन्य बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने यहाँ से निकलने वाले कचरे का निस्तरण स्वयं करेंगे श्रोतों। जी बिल्कुल, इसके लिए उन्हें अपने परिसर में बायो प्लांट, ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर स्थापित करना होगा जहाँ गीले कचरे से जैविक खाद तैयार की जाएगी। नगर निगम ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू करते हुए शहर के बड़े कचरा उत्पादकों को सर्वे शुरू जो है वो कर दिया गया है। ये फैसला अदालत और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के बाद लिया गया है। श्रोतों, ये कदम अदालत और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के निर्देशों के बाद उठाया गया है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आप सभी सुन रहे हैं इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने बन के और गूंज प्यारे प्यारे श्रोताओं की।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

नमस्कार श्रोताओं, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते है। हमारे नमस्कार को स्वीकार कीजिएगा मोहतरमा, जितनी भी हमारी बहनें हम उम्र और माताएं कार्यक्रम को सुन रही हैं, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। और जितने भी हम उम्र हमारे लड़के हमारे अपने बुज़ुर्ग, उन सभी को भी मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार है। मेरा नाम सचिन कपूर है और मैं वेडी गुंजन धर्मशाला में जो कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, इस कार्यक्रम का नाम गुड इवनिंग धर्मशाला है और इसे होस्ट कर रहा हूँ। श्रोताओं, 8 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे। 8 बजे तक ये सफ़र जो है वो साथ साथ रहेगा, हम साथ साथ हैं। कार्यक्रम में बहुत सी जानकारियाँ जो है वो आपको दी जाती हैं श्रोताओं, बहुत सी जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाया जाता है। साथ ही साथ गीत संगीत के माध्यम से भी आपके मन को खुश करने की, आपके दिल को खुश करने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारे श्रोता जो हैं वो जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन से भी ना बिछड़े, मनोरंजन की ओर भी चलें। और इस प्रकार की हमारी कोशिशें जो हैं वो 8 बजे तक रहती हैं श्रोताओं। तो आइए आगाज चाहेंगे आप सभी एक प्यारे से गीत के साथ। जी बिल्कुल, तो आगाज करते हैं कार्यक्रम का इस गीत के साथ। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा वेडी गुंजन की इसी गूंज के साथ। और बहुत ही प्यारा से ये गीत है श्रोताओं, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।

शोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं सचिन कपूर हूँ, कार्यक्रम में को होस्ट कर रहा हूँ। श्रोतों तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से, पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्रोतों कहते हैं जितना भी जीवन में जो है वो ज़रूरी होता है। श्रोतों बिल्कुल जीत जो आपने लक्ष्य तय किया है उस तक पहुँचना भी जो है वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मंजिल होती है श्रोतों वो पाना ज़रूरी है। रास्ते हालांकि बहुत परेशानी भरे होते हैं, रास्ते हालांकि बहुत कठिन होते हैं, इंसान बहुत बार गिरता है, संभलता है, फिर चलता है, लेकिन चलना ज़रूरी है लाइफ में। श्रोतों मैं सचिन कपूर हूँ, आप सभी कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं और आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन एक बार फिर से लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को बिल्कुल इस प्यारे से गीत की ओर। और गीत के बाद श्रोतों अन्य जानकारियों का तो पूरा पिटारा जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ है। श्रोतों ये पिटारा बिल्कुल अब तक हम पहुंचाएंगे। और कहते हैं ना श्रोतों कि मौत कब किस मोड़ पर खड़ी है, मौत कब किस खाई में, ज़िंदगी जो है वो कब किस खाई में जाकर गिर जाए ये कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल सरकारी जिम्मेदारी निभाने निकले एक कर्मठ अधिकारी का सफ़र जो है वो मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे की खबर बन गया। श्रोतों गरली क्षेत्र के मनियाला और चंबा खासा पटवार सर्कल में तैनात पटवारी प्रदीप कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। श्रोतों पूरी रात परिजन पुलिस और सहकर्मी उनकी तलाश करते रहे, लेकिन सुबह गरली मुही लिंक रोड पर जो है वो 20 फुट गहरी खाई में पलटी कार ने हर उम्मीद जो है वो तोड़ दी। श्रोतों बताया जा रहा है कि प्रदीप कुमार जो है वो सोमवार को सरकारी कार्य के सिलसिले में प्रागपुर तहसील और देहरा गए थे। आवश्यक कार्य निपटाने के बाद वह वापस लौट रहे थे। देर शाम तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने फ़ोन किया लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। सूचना मिलते ही रक्कड़ पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ रात भर जो है वो मार्ग पर सर्च ऑपरेशन चलाया। मंगलवार सुबह सड़क से नीचे गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त कार दिखाई दी। राहत एवं बचाव दल ने कार तक पहुंचकर प्रदीप कुमार को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जो डॉक्टर थे उन्होंने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जाँच जारी है और अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तभी कहा जाता है श्रोतों की मौत कब किस मोड़ पर खड़ी है हमें नहीं पता, कब किस खाई में इंतज़ार कर रही है ये भी हमें नहीं पता। बिल्कुल आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी श्रोताओं को ये अगला प्यारा सा गीत आपके रेडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में।

श्रोता बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कि मेरा दिल जिस हादिल पे फिदा है वो बेवफा है, एक बेवफा है। देखिए बेवफा तो इंसान होता नहीं है, कभी उसको हालात जो है वो बेवफा बना देते हैं, कभी हो सकता है कुछ इंसान की जो हरकतें होती हैं वो बेवफा बना देती हैं, है ना। तो इंसान बेवफा वैसे खुद से होता नहीं है, लेकिन हालात जो होते हैं मुझे लगता है वो बेवफा बना देते हैं। तो चलिए, दिल तो बेवफा होता ही है सभी का श्रोतों, लेकिन हम और आप बेवफा नहीं है, क्योंकि हम और आप बने हुए इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला में, जहाँ पर श्रोताओं बहुत सारी जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाई जाती हैं, और साथ ही साथ गीत संगीत के साथ भी आप सभी श्रोताओं को रूबरू करवाया जाता है। तो एक बार फिर से पुनः जो अभी वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हैं उन सभी को मैं पुनः उनका स्वागत करता हूं, उन्हें नमस्ते करता हूं, और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और कुछ खास जानकारियों के साथ आपको और रूबरू करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 से 3 माह में जो है वो हिमकेयर की जगह नई स्वास्थ्य बीमा नीति जो है वो लागू होगी श्रोताओं। इसमें हिमकेयर योजना में शामिल लोगों का डाटा छटनी कर शामिल किया जाएगा श्रोताओं। पात्र प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। इसमें 10 लाख परिवारों को शामिल किया जाएगा श्रोताओं। मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने पर बीमा कवर का लाभ मिलेगा श्रोताओं। इसी प्रकार अगली जानकारी भी जो है वो आप तक हम साझा कर देते हैं। मणिमहेश यात्रा 2026 के सफल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यात्रा के लिए जो है वो ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है श्रोतों। श्रद्धालु यात्रा के लिए अपना पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर सकेंगे। इसी प्रकार की कुछ एक और खास जानकारियां जो है वो हम आप तक शेयर करेंगे, साझा करेंगे। यूं ही बने रहिएगा हमारे साथ रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ।

0: शो तो FM 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना सचिन कपूर। तो चलिए जी, जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा जो है श्रोताओं वो यूं ही खुलता रहेगा। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को एक और खास जानकारी की ओर। हिमाचल प्रदेश में स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए कई बड़े बदलाव करने जा रही है सरकार। श्रोतों, राज्य के दूर दराज क्षेत्र में जहां पर शिक्षक सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे जनजातीय स्कूलों के लिए जो है वो अब शिक्षा विभाग नई नीति तैयार कर रहा है ताकि बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान की जा सके। जम्मू कश्मीर मॉडल की तर्ज पर इस संबंध में राज्य का शिक्षा विभाग नई नीति तैयार कर रहा है श्रोताओं, जिसके तहत स्कूलों में अध्यापकों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी और बच्चों को बेहतर स्कूली शिक्षा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा श्रोताओं। इसी प्रकार से जानकारियों का सिलसिला, जानकारियों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा, बने रहेगा रेडियो गुंजन की सी गूंज के साथ। लेके चलेंगे आप सभी को श्रोताओं एक और बेहतरीन गीत की ओर।
1: पूछो मुझे क्या हुआ है,

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये वेडी गुंजन धर्मशाला, और दिल लगाने की सजा तो जरूर मिलती है श्रोतों, और ये सजा जो है श्रोतों वाकई में दर्द बहुत देती है, बहुत गहरे जख्म जो है वो भी देती है। बहरहाल मैं सचिन कपूर हूँ, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप वेडी गुंजन सुन रहे हैं और गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय चल रहा है। आइए श्रोतों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। चिट्टे के साथ 3 तस्कर जो हैं वो किए गिरफ्तार श्रोतों। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जो है वो 2 अलग अलग मामलों में कुल 7.90 ग्राम हीरोइन चिट्टा बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है श्रोतों। दोनों मामलों में आरोपियों के विरुद्ध जो है वो NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। बिल्कुल श्रोतों, और पहले मामले में पुलिस थाना इंदौरा की टीम ने टांडा क्षेत्र में लगाए गए नाके के दौरान जो है वो एक संदिग्ध स्कूटी चालक की रोक कर उसकी तलाशी नियम अनुसार जो है वो तलाशी ली। तलाशी के दौरान स्कूटी की डिक्की से 7 ग्राम हीरोइन चिट्टा बरामद हुआ श्रोतों। आरोपी की पहचान मुकुल निवासी गांव व डाकघर गुड्डा कला जिला पठानकोट पंजाब के रूप में हुई है श्रोतों। पुलिस ने आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर स्कूटी को कब्जे में ले लिया। मामले की गहन जांच जारी है श्रोतों। दूसरे मामले में पुलिस थाना ज्वाली की टीम ने जो है वो राउंड के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर ज्वाला रेलवे स्टेशन के समीप एक सफ़ेद रंग की एक्टिवा स्कूटी की तलाशी ली श्रोतों। तलाशी के दौरान स्कूटी की डिक्की में 0.90 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। इसके अलावा मौके से नशा सेवन में जो है वो इंजेक्शन और पेपर है ना, फ्यूल पेपर तथा अन्य सामग्री भी बरामद की गई श्रोतों। तो इस प्रकार से हमारे युवा जो है वो नशा बेचने में बिजी है, नशा करने में बिजी है श्रोतों। आप सभी बने हुए हैं इस समय RJ सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। ये गूंज यूं ही चलती रहेगी, ये गूंज यूं ही बरकरार रहेगी क्योंकि शाम हो चुकी है श्रोतों। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस गीत की ओर।

शतों 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये वेड़ी गुंजन धर्मशाला है और वाकई में ही शाम धुआं धुआं तो है ही। शतों कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आप सभी बने हुए इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ। आइए अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। प्रदेश सरकार शहरी स्थानीय निकाय की कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल बनाने के लिए बड़े स्तर पर जो है वो सुधार कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शहरी विकास मंत्री के नेतृत्व में शहरी विकास विभाग प्रदेश भर में 15 म्यूनिसिपल शेड सर्विस स्टेवेस स्थापित कर रहा है। श्रोतों, इन केंद्रों के माध्यम से नगर परिषदों और नगर पंचायतों से जुड़ी विभिन्न सेवाएं एक ही स्थान पर जो है वो उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे लोगों को बेहतर, तेज और पारदर्शी सेवाएं मिल सकेंगी। आप सभी बने हुए हैं इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ। शो तो कहते हैं ना कि किस्मत पर भरोसा जो है वो भी ज़रूर रखिए, क्योंकि कब किसकी कहाँ कैसे किस्मत बदल जाए वो कोई नहीं आंक सकता श्रोताओं। और ये हकीकत है कि ज़िंदगी में जो है वो हार नहीं माननी है। सपने देखना जो है वो बिल्कुल अच्छी बात है और सच्ची बात है श्रोताओं, और सपने साकार करना वो आप कितना कैपेबल हैं वो आप पर निर्भर करता है श्रोताओं। बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को इस

शो तो चलने का टाइम हमारा तो अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ है लेकिन ये गीत बहुत प्यारा है श्रोतों, और ये गीत के साथ साथ ये मूवी भी बहुत प्यारी है श्रोतों। बॉर्डर मूवी से लिया गया ये गीत था श्रोतों, और बिल्कुल इस मूवी को देख कर ना हर किसी के मन में जो है वो देशभक्ति की एक जिज्ञासा जो है वो जाग जाती होगी, एक ललक जो है वो आ जाती होगी कि मुझे भी आर्मी में जाना है, मुझे भी देश की सेवा करनी है, चाहे वो कोई भी आपका काम क्यों ना हो। बिल्कुल आर्मी तो आर्मी है, लेकिन आप देश में रहकर भी जो है वो देश की सेवा जो है वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल अपने देश के लोगों की सेवा आप कर सकते हैं, अपने देश की सेवा आप कर सकते हैं श्रोतों। बहरहाल FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ वेडियो जो कि सचिन कपूर। अब से ठीक 3 मिनट बाद यानी कि पूरे 7 बजे जो है वो समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों की बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्य प्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा स्वास्थ्य सेवा उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी तथा कथित यौम इस्तेसाल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इस सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉप और गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने श्री गडकरी द्वारा दायर मानहानि के दीवानी मुकदमे में अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग ने आज बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्रियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। निफ्टी 10 अंकों की बढ़त के साथ 24,625 पर रहा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में ईशा रानी, बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिहा, अनमोल खरब और श्रियांशी वलीशेट्टी ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठाकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
2: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरे तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनी
2: तो श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वीडी गुंजन धर्मशाला, और मैं सचिन कपूर हूँ। और वाकई में ना कि हर सुबह जो है वो एक चैलेंज होता है हमारे लिए, है ना, और शाम जो है वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हमें जो है वो बिल्कुल देकर जाती है। श्रोताओं, तो सुबह जब भी आप उठते हैं तो ज़िंदगी की भाग दौड़ भरी इस दुनिया में हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। हर दिन सीखने के लिए होता है, और हर दिन हम कुछ ना कुछ नया जो है वो इन्हेंस करते हैं, वो सीखते हैं श्रोताओं। और शाम कुछ ना कुछ तजुर्बा जो है वो बिल्कुल देकर जाती है, एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल देकर जाती है श्रोताओं। अब सभी बने हुए इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला में, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। तो आइए जी, बहुत सी जानकारियाँ जो अब आप तक और भी ज़्यादा जो है वो पहुँचानी हैं, और बहुत सारी जानकारियाँ, तो धीरे धीरे हम बढ़ते हैं आगे, जानकारियों का पिटारा जो है वो खोलते चलते हैं श्रोताओं, है ना जी। कुछ एक और जानकारियाँ जो है वो आप तक हम पहुँचा रहे हैं श्रोताओं रेडी गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। चलिए लेके चलते हैं इस जानकारी की ओर आप सभी श्रोताओं को। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र को लेकर अब सभी विभागों ने, सभी डिपार्टमेंट ने जो है वो तैयारी तेज़ी से कर ली है श्रोताओं। प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने भी जो है वो विधानसभा सत्र को लेकर अधिकारियों को अलर्ट मोड पर कार्य करने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य में 21 अगस्त से शुरू होने जा रही मॉनसून सत्र से पहले उच्च शिक्षा विभाग ने 7 अगस्त तक संबंधित विभागों को विभाग से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्री के लिए तैयार किए जाने वाले विस्तृत बैकग्राउंड नोट से विभाग की उपलब्धियों के साथ साथ उन सभी मुद्दों को शामिल किया जाएगा जिन पर विधानसभा में प्रदेश सरकार को विपक्ष के सवालों का सामना करना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा निदेशक सुनीता सिंह की ओर से जो है वो जारी आदेशों में निर्देश दिए हैं कि सभी शाखाएं 31 जुलाई तक की वर्तमान स्थिति के आधार पर जो है वो तथ्य रिपोर्ट जो है वो तैयार करें और ये विभाग को प्रदान करनी होगी श्रोताओं, ताकि शिक्षा विभाग इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सके। इस जानकारी में रिक्त पदों की जानकारी के साथ ही विभाग में अब तक की गई नई नियुक्तियों और HPPSC सहित HPRCA के माध्यम से हुई भर्तियां, आउटसोर्स कर्मचारियों का ब्यौरा, ट्रांसफर सभी चीज़ें जो हैं वो निर्माण कार्य की प्रगति का पूरा रिकॉर्ड जो है वो मांगा है। तो कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला चला हुआ है श्रोताओं। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को अब इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं आपके अपने वेडियो सेट पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। आइए जी कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को इस खास जानकारी की ओर। शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए हाल ही में जो है वो हुए एक हादसे में जो है वो रेलू निवासी स्वर्गीय पवन कुमार के परिवार की सहायता के लिए जो है वो सराहनीय पहल की। श्रोतों जी बिल्कुल क्या पहल की श्रोतों अब इस बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। उन्होंने स्वर्गीय पवन कुमार की बड़ी बेटी को जो है वो BCA में प्रवेश के लिए 50,000 रुपये का चेक भेंट किया और परिवार को जो है वो हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। कुछ दिन पूर्व विधायक केवल सिंह पठानिया शोक परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे थे। उस दौरान उन्हें बताया गया कि पवन कुमार परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे जो मिस्त्री का कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। परिवार में 2 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटी का BCA में प्रवेश होना था। स्वर्गीय पवन कुमार प्रवेश के लिए 20,000 रुपये की व्यवस्था कर चुके थे और शेष राशि लौट कर देने की बात कहकर घर से निकले थे श्रोतों, लेकिन दुर्भाग्यवश हादसे में उनका निधन हो गया। अपने वादे को निभाते हुए रविवार को विधायक ने तीनों बच्चों को अपने कार्यालय बुलाया और बड़ी बेटी को 50,000 रुपये का चेक प्रदान किया। उन्होंने घोषणा की कि बड़ी बेटी की आगे की पढ़ाई का पूरा खर्चा भी वे स्वयं करेंगे। साथ ही 6ठी कक्षा में पढ़ रहे बेटे और दूसरी बेटी की शिक्षा का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी भी ली। श्रोतों इस अवसर पर विधायक ने संबंधित शिक्षण संस्थान के MD से दूरभाष पर यानी कि टेलीफोन पर बातचीत कर छात्रा की फीस में जो है वो यश संभव राहत देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक अभाव किसी भी बच्चे की शिक्षा में बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। विधायक ने SDM शाहपुर को निर्देश दिए हैं कि 4-लाइन परियोजना के अधिकारियों से जो है वो स्थापित कर पीड़ित परिवार को नियम अनुसार हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाए। इसी प्रकार से जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ गूंज अपने पन के और गूंज आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं के।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और सचिन कपूर के साथ एक कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला। कार्यक्रम में श्रोताओं जानकारियों का सिलसिला भी चला हुआ है और साथ ही साथ गीत संगीत का भी। तो आइए, अब वक्त हो गया है श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का। मिलते हैं अंतराल के बाद।

0: गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
2: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिर कर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरें तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है? हम मजा कर रहे हैं इधर।
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ, मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना, तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले, तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 रुपीज का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो,
10: 30,000 का?
8: हाँ
10: ले।
8: सच्ची?
10: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
10: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की ईएमआई आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: पागल हो क्या? यहाँ मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है। आप कह रहे हो ईएमआई भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो,
10: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?

FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है। और कुछ चीज़ें जो हैं वो ना हो तो अच्छी रहती हैं ज़िंदगी में, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होना बहुत ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी में, जिससे हमें तजुर्बा मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। बहरहाल 7:45 हो चुके हैं और अब वक्त हो गया है रेडियो गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।

0: विस्तार से। राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट व जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट के मासिक वेतन में 78% की बढ़ोतरी को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर का मासिक वेतन 33,660 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। उन्होंने कहा कि इससे विशेषज्ञ चिकित्सकों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है ताकि लोगों को घर द्वार के समीप बेहतर उपचार व आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेशवासियों से प्रकृति के संरक्षण व हिमाचल को प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने के लिए पौधरोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने आज शिमला जिले की मल्याणा पंचायत के शुराला गांव में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि पौधरोपण केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल के वन यहाँ की प्राकृतिक धरोहर हैं और साथ ही उत्तर भारत की जल सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन और लाखों लोगों के जीवन का आधार भी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक पेड़ माँ के नाम जैसे जन अभियान ने देश भर में पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ने का प्रेरणादायी कार्य किया है। राज्यपाल ने युवाओं से पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का मिशन बनाने का आह्वान भी किया। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों, प्रतिशोधपूर्ण राजनीति, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग के विरोध में आज शिमला में विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर ताले लगाने की राजनीति शुरू की। उन्होंने कहा कि सरकार का 4 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने को है लेकिन सरकार आज भी बंदी व तालाबंदी की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाई है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं सहित नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है और ये स्पष्ट संदेश है कि प्रदेश की जनता अब कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर देखना चाहती है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनावी हार से बौखलाई कांग्रेस सरकार अब प्रशासन का दुरुपयोग कर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है।
1: जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए काम करते हैं, विपक्ष की भूमिका उस सारी चीज को लेकर के बड़ी स्पष्ट है कि उनकी आवाज को अगर दबाने की कोशिश की तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज तय किया है कि हम जो दमनकारी नीति, जो दबाने की, धमकाने की और मामले दर्ज करने की, जो भी आदमी उनके खिलाफ आवाज उठाता है, खासतौर से जो विधायक, पूर्व विधायक और पार्टी के हमारे नेता है, हमने तय किया है कि हम शुरुआत करेंगे कि आप सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले समय में जो है वो जनता सुधार देगी।
0: इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा और प्रत्येक मंडल में अब हर महीने कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धरने व प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा गांव-गांव और घर घर जाकर जनता को सरकार की विफलताओं से अवगत कराएगी। बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को विकास की दिशा में आगे ले जाने की बजाय संकट की स्थिति में पहुंचा दिया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख रेल हब बन चुका है जहां से 20 रेल सेवाएं संचालित हो रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इन रेल सेवाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश का देश के 13 राज्यों से सीधा संपर्क स्थापित हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के

0: तहत अम्ब अंदौरा रेलवे स्टेशन का आधुनिक स्वरूप में पुनर्विकास किया गया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में रेलवे अधोसंरचना के विस्तार और यात्री सुविधाओं के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नंगल डैम ऊना दौलतपुर चौक रेल लाइन क्षेत्र के लिए जीवन रेखा बनकर उभरी है और इस रेल मार्ग से लोगों की आवाजाही आसान हुई है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने आज हमीरपुर जिले के छबोट गांव में उद्यान विभाग द्वारा एचपी शिवा परियोजना के तहत पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया और स्वयं भी मौसमी का पौधा लगाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार एचपी शिवा परियोजना के माध्यम से प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बागवानी की क्रांति ला रही है। इस परियोजना के तहत फल उत्पादन को बढ़ावा देने, किसानों की आय में वृद्धि करने और उच्च मूल्य वाली फल फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सुनील शर्मा बिट्टू ने किसानों से इस महत्वाकांक्षी फोन किया। उन्होंने बताया कि एचपी शिवा परियोजना के अंतर्गत 15 अगस्त तक जिले में 1,00,000 फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा देगी बल्कि किसानों की आर्थिक समृद्धि, रोजगार सृजन व ग्रामीण अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कहा कि गांव छबोट में वर्षा शालिका का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि सिरमौर जिले में सड़क परियोजनाओं पर करीब 244 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। वे आज राजगढ़ उपमंडल के झिमीधार में आयोजित शनोल मेले के समापन समारोह के दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत 85 करोड़ रुपए की 11 सड़क परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। लोक निर्माण मंत्री ने यशवंत नगर नेरी पुल सड़क का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य के निर्देश दिए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आज सिरमौर जिले के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में 1,47,00,000 रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य मशवा का लोकार्पण किया। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के माध्यम से आसपास की 3 पंचायतों के लोग लाभान्वित होंगे। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने बद्दी नालागढ़ फोर लेन परियोजना के शेष कार्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 378 करोड़ 48 लाख रुपए का स्वीकृति पत्र जारी किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना हिमाचल प्रदेश विशेषकर बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर्ष महाजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हिमाचल प्रदेश में सड़क अवसंरचना को अभूतपूर्व गति दे रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कॉन्ट्रैक्ट व जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर विशेषज्ञ के मासिक वेतन में 78% की बढ़ोतरी को दी मंजूरी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का मिशन बनाने का किया आह्वान। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों, भ्रष्टाचार व बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में शिमला में किया प्रदर्शन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा अम्ब अंदौरा रेलवे स्टेशन बना हिमाचल का प्रमुख रेल हब। देश के 13 राज्यों से जुड़ा हिमाचल का सीधा संपर्क। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अनुसार सिरमौर जिले में सड़क परियोजनाओं पर खर्च की जा रही है 200 करोड़ से अधिक की राशि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सुन रहे थे। तो श्रोताओं अब वक्त हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, आप सभी को टाटा बाय बाय कहने का। यूं ही कट जाएगा जिंदगी का ये सफ़र साथ रहने से। तो आप भी साथ रहिए, हम भी साथ रहते हैं और माँ बाप की सेवा हमेशा करते रहिए। माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं, कोई पुण्य नहीं है। तो ज़रूर करें, अपनों के साथ प्यार रखिए, अपनों के साथ अपनापन ज़रूर रखिए, अपनों के साथ प्यार ज़रूर रखिए, प्रकृति की सेवा ज़रूर करें, प्रकृति का ख्याल जो है वो ज़रूर रखें। श्रोतों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सचिन कपूर लेता हूँ आपसे अलविदा। नमस्ते धर्मशाला।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की? जरा सी बात तो थी। 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी क्या?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
5: बहू, ठीक किया है तूने।

0: अरे चुप क्यों हो गए?
1: माइक टेस्ट टेस्ट, भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट
2: टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
3: टेस्ट
4: टेस्टिंग
5: टेस्ट
3: टेस्ट
6: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से, सही

0: की जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबके तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे, और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है, और आपकी जिंदगी अपने आप फिल्टर हो जाएगी।
5: मम्मी मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है, अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
6: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना हैं, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
5: बहू, ठीक किया है तूने।

0: अरे चुप क्यों हो गए?
1: माइक टेस्ट टेस्ट, भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट
2: टेस्ट
3: टेस्टिंग। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट
4: टेस्टिंग
5: टेस्ट
4: टेस्ट
6: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
9: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
8: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
10: हर घर सूर्य घर।
11: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबके तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है और आपकी जिंदगी अपने आप फिल्टर हो जाएगी।
12: मम्मी मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
13: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: एक दूजे के वास्ते।
1: आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना हैं, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
5: बहू, ठीक किया है तूने।

0: चुप क्यों हो गए?
1: माइक टेस्ट टेस्ट, भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट
2: टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
3: टेस्ट
2: टेस्ट
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
7: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
6: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
8: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे। और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है, और आपकी जिंदगी अपने आप फिल्टर हो जाएगी।
9: मम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
10: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज।

में हाथ डाल, ए गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

मैं हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदार दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

91.2 मेगाहर्ट्ज़। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो आइए श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं दी संगीत आराधना,